0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: అస్మత్సాఖాత్వందే సోమ విశ్వేషాన్ దేవానాం ప్రియం పాథోభీః ఇతి అష్టమోధ్యాయః. ఓం
1: ఓం నమః శివాయ. డియర్ యూజర్స్ ఆఫ్ shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Hindi Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Nayanmar Puranam. The title is Karaikal Ammayar, presented by Singapore Shankara Narayanan. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Namah Shivaya. Bhakton, aaj hum sunenge ek Dakshin Bharatiya Mahila Sant ki kahani, jinka naam Karaikal Ammayar hai. 2000 वर्ष से भी पूर्व कारैकल नगरी व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ एक से बढ़कर एक धनी व्यापारी रहते थे। ऐसे ही एक श्रेष्ठी धन्नदत्त के घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम पुनीतवती रखा गया। बालिका को बचपन से ही मिट्टी या रेत के मंदिर बनाने, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा करने, पूजा ध्यान जप आदि में विशेष रुचि थी। विवाह योग्य आयु होने पर धन्नदत्त ने पुत्री का विवाह एक धनी व्यापारी परमदत्त के साथ कर दिया। परमदत्त की दृष्टि अपनी गुणवती पत्नी की ओर कम, भेंट स्वरूप प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं की ओर अधिक थी। ऐसे पति के प्रति पुनीतवती का गृहस्थ जीवन प्रेम से प्रारंभ हुआ। एक दिन बाहर से आए एक व्यापारी ने परमदत्त को दो बढ़िया आम भेंट दिए। उसने दोनों आम सेवक के हाथ घर भिजवा दिया। भोजन तैयार करने से पूर्व ही एक शिव भक्त उनके द्वार पर आ गए। पुनीतवती भक्तों को नियमित रूप में श्रद्धापूर्वक भोजन करवाती थी और यथोचित भेंट प्रदान करती थी। पुनीतवती ने पति द्वारा भेजे गए आमों में से एक आम शिव भक्त को भेंट कर दिया। दोपहर को भोजन के समय उसने दूसरे आम पति के पत्तल में परोसा। आम बहुत ही स्वादिष्ट था। परमदत्त पत्नी से बोला, एक और आम होगा, वह भी लाओ। आम तो शिव भक्त को भिक्षा में दे दिया था पुनीतवती ने। उसने रसोई घर में खड़े होकर कातर भाव से भगवान से प्रार्थना की। ईश्वर कृपा से उनके हाथ में एक और आम आके गिर गया। पुनीतवती ने यह आम पति को परोस दिया। आम खाकर परमदत्त को लगा कि इस आम का स्वाद असाधारण है। उसने पूछा, तीनों लोकों में ऐसा आम नहीं मिल सकता, यह आम तुम्हें कहां से मिला? पत्नी ने पूरी घटना सुना दी, पर परमदत्त को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यदि ईश्वर की कृपा से मिला तो ईश्वर से एक और आम मांग कर दिखाओ। अत्यंत निम्न स्वर से पुनीतवती ने भगवान की कुमन से आग्रह किया और प्रार्थना किया। तभी पुनीतवती के हाथ में एक और आम आके गिर गया। उसने उसे पति के हाथ में रखा, लेकिन यह क्या, देखते ही देखते वह आम उसके पति के हाथ से गायब हो गया। परमदत्त अवाक होकर देखता ही रह गया। उसे विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी सचमुच देवी है। स्वयं को ऐसी दिव्य स्त्री के साथ रहने के लिए अयोग्य मानकर वह व्यापार के बहाने नगर से दूर पांड्य देश में चला गया। पांड्य देश में पहुंचकर परमदत्त ने दूसरा विवाह कर लिया। उसके घर पर एक लड़की पैदा हुई। कन्या का नाम उसने पुनीतवती रखा। इधर परमदत्त के मित्र बंधुजन उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने पांडिदेश में उसे खोज निकाला तो उसकी पत्नी पुनीतवती को उसके पास ले गए। उसे अनुरोध किया कि अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले। परमदत्त अपनी नई पत्नी और पुत्री सहित पुनीतवती के चरणों में नतमस्तक होकर पूजा करने लगे। सभी यह देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब परमदत्त ने घर में थे चले जाने का मूल कारण बताया और देवी गुणों से युक्त पुनीतवती के साथ रहने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। पति का यह विचार जानकर दीर्घ केशपाश वाली अपार सौंदर्य से युक्त पुनीतवती ने दीर्घ जटाधारी शिव के चरणों का स्मरण किया और मानव शरीर से मुक्त होकर प्रेत योनि की कामना की। उसी क्षण उसका मांसल सौंदर्य लुप्त हो गया और उसके स्थान पर अस्थिति कंकाल शेष रह गया। वे उसी रूप में कैलाश की ओर अग्रसर हुई। कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर पवित्र धरती पर चरण न रखकर पुनीतवती शीश के बल धीरे धीरे शिवलोक की ओर बढ़ी। वहां देवी पार्वती ने उनके अद्भुत त्यागपूर्ण भक्तिभाव को देखकर शिव से उनके विषय में जानने की जिज्ञासा की। शिव ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा, यह सुनते ही पुनीतवती दंडवत शिव के चरणों पर लेट गई। शिव के आदेशानुसार वे तिरुवालंगाड़ में मंदिर के निकट रहकर उनकी स्तुतिगान करने लगी। भक्तिभाव से लोग उन्हें कारैकल की अम्मा, कारैकल अम्मयार कहने लगे। भारतीय नारी को अपने विचारों और सिद्धांतों के अनुरूप पति न मिले तो उसका जीवन कैसे बीतता है यह जानना है तो हमें शिल्पदिकारम की कन्नकी और पेरिय पुराणम की कारैकल अम्मयार के उदाहरण देखने होंगे। परमदत्त एक निम्न कोटि का व्यक्ति था। अपने धन ऐश्वर्य में लिप्त उसने पत्नी के प्रति दायित्व भाव का भी ध्यान न रखा। एक आम खा लेने के बाद दूसरा आम खाकर भी पत्नी को तीसरा आम मांगने के लिए बाध्य करके उसने अविश्वास का द्योतक दिया। फिर पत्नी के देवी होने का संदेह करके पलायन और पुनर्विवाह उसके चरित्र की दुर्लभता का प्रमाण है। जहां तक पुनीतवती का प्रश्न है, उसके हृदय में शिव के प्रति अटूट आस्था है, पर पति में दोष दर्शन करना उनका स्वभाव नहीं। ये एक आदर्श नारी रत्न स्थापित हुई। उन्हें इसी

पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवो शिवो शिवो। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित श्रुतिसार समुद्धरणम नो शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति संबंधी कुछ चर्चा कर रहे हैं। अभ्यास के लिए 59 श्लोक। हंस पद्म बनम समिच्छति तथा यथा नीलांबुदम चातक कोकह कोकनद प्रियं प्रतिदिनम्

కైవల్యసౌఖ్యప్రదం तो विचार चल रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी मेरे ऊपर भगवान की कृपा क्यों नहीं होती है, अनादिकाल से मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस भव चक्कर में कल्लोलित कर रहा हूं, इससे निकलने की कोशिश करता हूं, निकल नहीं पाता हूं। और मेरे अपनी सामर्थ्य तक काम नहीं कर रही है। कई बार आपको पुकारा है, आप मेरी इस अवस्था को देखते हुए भी आपके हृदय में दया क्यों नहीं आती है, मेरे प्रति आप इतने कठोर इतने निष्ठुर क्यों बन रहे हो। अब इस भवार्णव के इस त्रास को आगे हमसे सहा नहीं जाएगा। साक्षात प्रसन्नो भवा, आप प्रसन्न हो जाइए, मेरे प्रति आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न करने के लिए मेरे पास, आपको खुश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मैं यदि विष्णु होता, समुद्र के गहराई में पाताल में जाकर आपके लिए भोजन ले आता, क्योंकि समुद्र के गहराई में जाने की क्षमता मुझ में नहीं है, विष्णु में ये क्षमता है, वो जा सकते हैं। और आपका सबसे प्रिय भोजन तो पाताल में ही है। पाताल में ऐसी कौन सी भोजन है मेरा भाई? आपको सबसे प्रिय तो विष है, और विष तो नागों का राज्य पाताल है, और पाताल में गए बिना आपका प्रिय भोजन लाना मेरे लिए संभव नहीं है, और मैं पाताल जा नहीं सकता हूं, तो आपके लिए बढ़िया भोजन तो मैं ला नहीं सकता। और यदि मैं ब्रह्मा होता तो मैं जाता ऊपर की ओर आकाश में उड़ते हुए, बढ़िया बढ़िया स्वर्ग से मैं बढ़िया पुष्प तोड़ तोड़ के लाकर मैं आपको चढ़ाता, लेकिन मैं ब्रह्मा भी नहीं हूं कि आपकी पूजा के लिए मैं आकाश में जाकर अंतरिक्ष में जाकर स्वर्ग में जाकर फूल लेके आऊं और आपकी पूजा करूं, वो क्षमता भी मुझ में नहीं है। मैं यदि सूर्य होता तो आपके धोए हुए गीले कपड़े को सुखा देता, कि भगवान के जो गीले कपड़े होते हैं वो कौन सुखाता है, शिवजी के गीले कपड़े को सुखाने की क्षमता सूर्य में ही तो है, है? भगवान के गीले कपड़े क्या है पता है आप लोगों को? उनको कपड़ा पहनने की इच्छा हुई तो एक हाथी मरा हुआ था, उनका खाल निकाल ली, वो अभी अभी निकाला हुआ जो चमड़ा है वो गीला है कि सूखा है? गीला कपड़ा कोई पहनता है तो कपड़ा सुखाना पड़ेगा कि नहीं उसको? तो कौन सुखाता है भगवान शिव के कपड़ों को? वो सूर्य ही तो सुखाएंगे और क्या। और मुझ में आपके कपड़े सुखाने की क्षमता भी नहीं है, मैं सूर्य नहीं हूं, नहीं सुखा सकता।
ये सारी भाव शंकराचार्य जी शिव जी के सामने रखते हैं। कल का ये श्लोक हमारे चुमन भाई ने खूब प्रचार किया है, लेकिन खुद आप स्वयं नहीं आए। ये श्लोक तो आप लोग कंठस्थ कर लो भाई। एको बारी जबान धवत चिति न भो

साक्षात् प्रसन्नो भव। क्या आप में वो क्षमता नहीं है? अनादिकालीन मूला विद्या अज्ञान को नाश करने की क्षमता क्या आप में नहीं है? क्या मैं ये मानूं? ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम विचार करते हैं, आपके एक छोटा सा चिंगारी लेकर अस्तित्व में आया हुआ दिनकर, ये नहीं है, ये दिनकर नहीं है, सूर्य, हाँ दिनकर, वह उसमें इतनी ताकत है कि क्षिति नवो व्याप्तम तमो मंडलम, पृथ्वी और अंतरिक्ष को व्याप्त हुआ हुआ अज्ञान अंधकार को, रात्रिकालीन अंधकार को वह सूर्य अपनी उपस्थिति मात्र से एक सेकंड में तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है, और सारे अज्ञान अंधकार को हटाकर अपने अप्रत्यक्ष सबके नजर के सामने अपरोक्ष हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है सूर्य। सूर्य में जब इतनी क्षमता है, तुम कोटि सूर्य प्रवाह, और आप में कितनी प्रकाश है, तो ऐसे सूर्य के करोड़ों करोड़ों सूर्य के बराबर के प्रकाश तो आप अकेले में है, और ऐसा प्रकाश स्वरूप होते हुए भी आप कहीं सातवें आसमान में छुपकर बैठे हो, यह भी बात नहीं। रहते कहां हो? जहां मैं रह रहा हूं वहीं आप रह रहे हो, और जहां आप रह रहे हो वहीं ये मूला विद्या भी रह रहा है। इसके बावजूद वो मूला विद्या नष्ट क्यों नहीं हो पा रहा है? कैसे रह गया? ये आपकी कृपा उस मूला विद्या को मिला है, आपकी कृपा उस मूला विद्या को मिला हुआ है, इसलिए वो रह पा रहा है। और यदि आपकी कृपा मुझ पर हो तो मजाल है कि वो मूला विद्या टिक पावे, आपके प्रकाश के सामने मूला विद्या टिक पावे, मजाल है। मैं यही मानता हूं, उस मूला विद्या को नष्ट करने की क्षमता आप में नहीं है, ये तो मैं नहीं मानता। हाँ, मैं यही मानता हूं कि आपकी कृपा मुझ पर नहीं हो रही है, मैं इतनी मानता। और आश्चर्य की बात है, इस भाव को जगद्धर भट्ट नामक एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, शिव भक्त हुए हैं वो भी, उन्होंने अपनी भावना को शिव जी के सामने इस तरह व्यक्त किया है। जगद्धर भट्ट स्तुति कुसुमांजलि उनकी स्तोत्र है जगद्धर भट्ट जी की, अपने भाव को इस तरह व्यक्त करते हैं।

0: तीर्यदशामपि गता किल कामधेनोर् भाग्यैरभीष्टफलदः कृतिनाम् भवन्ति। हमने सुना है एक चिंतामणि होता है, एक पत्थर होता है चिंतामणि, स्फटिक, चिंतामणि स्फटिक, अचेतन, वो तो जड़ है। चिंतामणि में कोई चेतना नहीं है, उसमें अपनी समवेदना नहीं है, अपना विवेक नहीं है, अपनी चेतना नहीं है, वो चिंतामणि पूरा का पूरा जड़ है। चिंतामणि स्फटिक जाति रचेतनोपी, लेकिन हमने सुना है वो जड़ होने पर भी, अचेतन होने पर भी, उसके आश्रय में रहने वाले की हर इच्छा को पूरा करता है। क्या आश्चर्य की बात है, चेतना नहीं है उसमें, विवेक नहीं है, समवेदना नहीं है, उसके पास हृदय नाम की चीज नहीं है, दया करुणा नाम की कुछ भी नहीं है, जड़ है, स्फटिक पत्थर है वो, फिर भी कोई उसके आश्रय में यदि कोई कल्पना करता है, इच्छा करता है, उसकी हर इच्छा को पूरा करता है, इतनी क्षमता रखता है वो जड़ स्फटिक चिंतामणि। दूसरी बात हमने सुना है उससे थोड़ा चेतना कल्प वृक्ष की बात सुनी है, स्फटिक मणि यानी चिंतामणि से थोड़ा ज्यादा चेतना है उसमें, लेकिन एक प्रकार का वो स्थावर है, जड़ ही है वो भी। कल्पद्रुम कठिन काष्ठ विनिर्मितोपि, वो कल्प वृक्ष भी लकड़ी विशेष है, काष्ठ विशेष है, उसमें भी चेतना व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, चेतना तो है लेकिन अप्रकट है, लेकिन वो कल्प वृक्ष भी उसके आश्रय में रहने वाले व्यक्ति जो चिंतन करता है, जो इच्छा करता है, कल्प वृक्ष वो सब पूरा करता है, हैं? करता है कि नहीं, यही सुना है कि नहीं है। चिंतामणि स्फटिक जाति रचेतनोपी कल्पद्रुम कठिन काष्ठ विनिर्मितोपी। और तीसरा वस्तु हमने सुना है तीर्यक दशामपि गता किल कामधेनुर, कल्प वृक्ष में चेतना बहुत ही कम विकसित है, लेकिन उससे ज्यादा चेतना कामधेनु गाय में है, कामधेनु ज्यादा चैतन्य है, लेकिन है तो पशु, कामधेनु गाय चैतन्य है भले ही हो, है तो पशु। तीर्यक योनि का है वो, तीर्यक दशा, कामधेनुर हमने सुना है कि वो भी भाग्यै रविष्ट फलदा कृतिनो भवंती, उसके आश्रय में रहने वाले के हर व्यक्ति के भाग्य विधाता बन जाता है, अभिष्ट फलदा हो जाता है वो। कामधेनु के सामने बैठकर जो तुम जो कल्पना करो, जो चाहो, हर इच्छा को पूरा करता है, कामधेनु गाय करती है। यह हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा है, सुना है। तम तो प्रभो त्रिभुवनैक महेश्वरोपी। चिंतामणि कहां, चिंतामणि दुनिया के मनुष्यों को भाग्य विधाता बन जाता है, और तुम तो महेश्वर हो, और शास्त्रों ने आपको तो चिन्मय बपु कहा है। कहां चिंतामणि जड़ है और कहां आप चैतन्य हैं। तुम तो प्रभो त्रिभुवनैक महेश्वरोपी, और आपके बारे में तो यह कहा है पर्याप्त शक्ति रपी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। पर्याप्त शक्ति आपके लिए असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर्याप्त शक्ति है आपके पास। चिंतामणि काम्य वस्तु दे सकता है, कल्प वृक्ष काम्य वस्तु दे सकता है, कामधेनु काम्य वस्तु दे सकता है, लेकिन आप में तो ये क्षमता है कि जो काम्य वस्तु नहीं है वह भी देने की क्षमता आप में है। चिंतामणि कामधेनु गाय कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं दे सकता, ज्ञान नहीं दे सकते। जड़ हैं तो क्या ज्ञान देंगे ये। कामधेनु गाय में प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, मूला विद्या को नष्ट करने की क्षमता कामधेनु गाय में रंच मात्र भी नहीं है। अरे भाई मूला विद्या की बात छोड़ दो, तुला विद्या नष्ट करने की भी क्षमता नहीं है। किसमें? तुम लोग वेदांती हो, समझे कि नहीं? तुम लोगों को क्या पता, वेदांत सुनो तब पता चलेगा मूला विद्या क्या है, तुला विद्या क्या है, मूला विद्या नष्ट कैसे होता है, तुला विद्या नष्ट कैसे होता है। चिंतामणि में व्यक्ति के कामना इच्छा को पूरा करने की क्षमता तो है, लेकिन तुला विद्या को नष्ट करने की क्षमता नहीं। जब तुला विद्या को ही नष्ट करने की क्षमता नहीं तो मूला विद्या को नष्ट करने की क्षमता चिंतामणि में कहां से आएगा? हा? तुम्हें भूख लग रही हो और भोजन की कामना करो तो भोजन दे सकता है कौन? चिंतामणि कामदेवु कल्प वृक्ष। हा, तुम्हें धन और संपत्ति और दौलत की कमी है तो उसकी कामना करो, उसके सामने बैठकर।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन Shiva Mahima, presented by Swami Santoshi Mataji. Thank you. Om Namah Shivaya.
2: उन्होंने कह दिया, तुम्हें दे दिया, तो तुमने स्वीकार कर लिया कि सचमुच वो अग्नि तुम्हारे हाथ में आ गई, ऐसा तुमने मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया। विश्वास करने जैसा कोई लक्षण तुमको दिखता है? बुद्धि भ्रमित कर दी, तब जरा परीक्षा तो कर लो कि सचमुच तुम्हारे हथेली में अग्नि आई है अथवा नहीं आई है। ये आग तुम्हारे पास आई कि नहीं, जरा इसकी तुम परीक्षा तो कर लो। भगवान शिव के संदर्भ में ऐसा कहकर श्री हरि ने युक्ति के अनुसार भस्म वो अग्नि हाथ भस्मासुर के स्वयं अपने मस्तक पर रखवा दिया। जैसे अपने मस्तक पर रखा तो उसके साथ ही वो भस्मीभूत हो गया। तो कहने का अर्थ था भगवान शिव वरदान देने में जिनके नेत्र में ऐसी अग्नि है, प्रणेत्रधारी त्रिलोचन भगवान शिव है। वेदा त्रयत्रिन ये अग्नि इतनी अग्नि है कि जिस अग्नि का प्रभाव कामदेव ने अपने प्रभाव में आकर ब्रह्मा में अपना प्रभाव दिखाया, ब्रह्मा जी को संध्या के पीछे दौड़ा दिया। इंद्र में अपना प्रभाव दिखाया, अहिल्या का सतीत्व नष्ट कर दिया। और विष्णु में अपना प्रभाव दिखाया, तुलसी के साथ संबंध करा दिया। और इस प्रकार अपने प्रभाव से प्रभावित करके बड़े बड़े देवताओं को भी पराभूत कर देने वाला काम आज चाहता है कि मैं शिव पर विजय प्राप्त कर लूं, शिव के ऊपर मेरी जीत हो जाए। और ये सोचकर बाणों वृक्षों के पीछे छुपकर पुष्प बाणों से प्रहार करने लगा भगवान शिव के ऊपर। बिना किसी ऋतु के सुंदर ऋतु का आगमन हो गया और सभी कामदेव के प्रभाव में आकर के सभी हिमालय उसके प्रभाव में से ऐसा प्रभावित है कि सब उससे मुग्ध हो रहे हैं। परंतु भगवान शिव हैं कि उन्होंने नेत्र खोल करके जब देखा भगवान शिव ने और पाण प्रहार किए कामदेव के इस कृत्य को देखकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, समाप्त कर दिया, जलाकर राख कर दिया। अर्थात शिव के नेत्र के तीसरे नेत्र का ये प्रभाव है। अर्थात ऐसे भगवान शिव जिनकी शरण में जाकर के और बार बार देवताओं की प्रार्थना करने पर और शरीर उसे जीवित रहने का वरदान देने वाले भगवान आशुतोष चंद्रमौली चंद्रचूर चंद्रनाथ प्रभु त्रिनेत्रधारी हैं। याद रखना ये शिव जो तीन नेत्रों वाले हैं, ये शिव कहीं नहीं है, ये शिव आपके स्वरूपस्थ हैं, आपके स्वरूप में हैं, आपके अंदर बैठे हुए हैं। शिव स्वयं इस जीव इस मनुष्य इसके अंदर सचराचर चर और अचर में व्याप्त होते हुए भी सगुण साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से सभी के हृदय में विराजने वाले शिव के विषय में श्रवण करके कानों से शब्दों के माध्यम से मंत्र के श्रवण के माध्यम से शिवत्व हमारे हृदय में शिव स्वरूप शिव का दर्शन अपने भीतर कहाँ होना चाहिए। बोले भाव सरोरो भाव रूपी कमल के अनुसार हृदय रूपी कमल है और इस हृदय रूपी कमल के आसन पर विराजमान सदा शिव को अपने हृदयस्थ करें, हृदय में रखें। और ऐसे शिव आपके हृदय में आकर के जब विराजमान हो जाएंगे तो उनसे आपका पाप ताप संताप हरण करने वाले भगवान शिव का नाम है हर। हरति पापम हरति दुखम हरति दारिद्रम, जिस जो आपकी दरिद्रता को हर ले, आपके जन्मार्जित अनेक जन्मों में जो आपने पापार्जित किए हैं उन पापों को हर ले, आपकी दरिद्रता को हर ले, आपकी दुर्बलता को हर ले, आपके अज्ञान को हर ले, उन सब का हरण करने वाले कौन है। बोले शिव है। ये शिव क्या, भगवान शिव केवल इतना ही नहीं करते कि आपको लक्ष्मी प्रदान करते हैं, सुख समृद्धिशालीवान बनाते हैं, आयुष्य वर्धन करते हैं आपका, केवल इतना ही नहीं है। शिव कौन है, सर्व विद्या नामधीश्वरम। ये कैसे हैं भगवान शिव, बोले ये सर्व विद्या नामधीश्वरम, ये सारे विद्याओं के अधीश्वर हैं। ऐसी कौन सी विद्या है जो भगवान शिव से से छुपी हुई हो, भगवान शिव जिसके अधिष्ठान न हो, शिवारंभ नहीं हो, शिव से सदा शिव समारंभम, सदा शिव से आरंभ होने वाले विद्या का नाम ही तो याद रखना ब्रह्म विद्या है। इसलिए भगवान शिव सर्व विद्या नामिधीश्वरम। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी तो किससे होगी? बोले भगवान शिव से होगी, विशुद्ध ज्ञान दे आया। जिनका शरीर केवल केवल ज्ञानमय है, ज्ञान ही जिनका शरीर है, शिव क्या है? ज्ञान है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ये सत्य ज्ञान, सत्य क्या है? शिव है। ज्ञान क्या है? शिव है। अनंत क्या है? शिव है। अनंत क्या है? ब्रह्म है। अर्थात सत्य कहो, ज्ञान कहो, अनंत कहो, ब्रह्म कहो, ये सब शिव के नामों के पर्याय हैं। भगवान शिव के ही ये सारे नाम हैं। इसलिए ऐसे भगवान शिव जो स्वयं ज्ञानमय हैं और उनकी सत्ता ही शिवा है, शिव ज्ञान है, सत्ता शक्ति है, प्रकृति है, और बिना ज्ञान के सत्ता कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, और बिना सत्ता के ज्ञान निर्गुण चाहे कुछ करना तो बिना सगुण के कुछ नहीं कर सकता, और सगुण चाहे कि मैं कुछ करूं तो बिना निर्गुण के, बिना ज्ञान के कुछ नहीं कर सकता। अर्थात जब ये दोनों परस्पर मिलते हैं, दोनों परस्पर मिलते हैं और इनमें गति होती है, नाग का अर्थ गति भी होती है। संस्कृत में नाग का अर्थ है नाग, न अ ग, अर्थात जिसमें गति, जिसमें स्पंदन, जिसमें गति हो रही है। नाग का मतलब अध्यात्म में है गति, अर्थात ये गति किससे है? ये जगत की सृष्टि की जो गति चल रही है, ये शिव शिवा के स्पंदन से। जब शिव शिवा में, काम कामेश्वर में, जैसे समुद्र में तरंग उठती है, उसी प्रकार शिव शिवा में जब एक तरंग स्पंदन उठता है तो उस संसार, उससे सकल संसार उत्पन्न होता है जगत में। अर्थात यदि शिव शिवा के साथ मिलन न हो तो इसलिए ये जगत का कार्य नहीं हो। इसीलिए कहा है जगत माता भगवती पार्वती है, जगत पिता भगवान शिव है। शिव ही सबके जगत पति है, ये सबके पति अर्थात जगत पति, जगत भुवन के स्वामी भगवान शिव है। इसके नाग का अर्थ जो गतिमान है, जिसमें स्पंदन है, गति है, क्रिया है, और वो अक्रिय भी है। क्रिया क्रियो दक्ष, आप महिमन स्तोत्र में पाठ करते हैं, जो क्रिया में और अक्रिया में दोनों में दक्ष है वो कौन है? बोले शिव है। जो क्रियाशील भी दिखाई पड़ता है, अर्थात जब प्रकृति के साथ शिव स्वयं अपने आप से प्रकृति को प्रकट करके प्रकृति के साथ दिखाई पड़ता है, तब शिव में क्रिया दिखाई पड़ती है, गति दिखाई पड़ती है, और इस गति का नाम ही, और ये गति कैसे है, कैसे ही गति है? बोले नागिंद्र हारा है गोल गोल, आप कहते हैं ब्रह्मांड गोल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही गोल है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं, ये भी गोल हैं। ये सब गोल गोल जो आप कहते हैं, यही तो नागहार है नारायण, यही हार है। अर्थात इस प्रकार जो भगवान शिव नित्य हैं, सनातन हैं, ऐसे पवित्र नाम का स्मरण करने से, शिव नाम के शिव शिव कहने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोग मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि शिव नाम लेने में ही बड़ा परहेज करते हैं, अन्य आश्रय आ जाएगा। हम तो शिव का नाम नहीं लेंगे, पर वो भले आदमी कभी विष्णु नाम पढ़ते, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे, तो सर्व सर्व शिव ये सारे नाम भगवान श्री हरि के लिए भी आए। भगवान श्री हरि विष्णु सहस्त्र नाम में सर्व सर्व शिव ये सब नाम उसमें है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि समस्त भेदभाव को छोड़ करके, इस छोटे से मंत्र को, छोटे से नाम को यदि हम अपने जीवन में अपने मन को स्थिर करने के लिए, इस पर मुझे एक दक्षिण के संत की का स्मरण हो रहा है, अयप्प करके, अरिअप्प करके एक संत हुए हैं जिसे अप्पा भी कहते हैं। बड़े अच्छे शिव भक्त थे और उन वेदांत की बड़ी निष्ठा थी और वेदांत का पठन पाठन करते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे और हमेशा वो शिव शिव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते थे। एक दिन उनके वेदांत पठन पाठन का उनका कार्य था, वेदांत पढ़ते थे पढ़ाते थे। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज आप पढ़ाते तो वेदांत हैं पर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आप ये जपते रहते। तो उन्होंने कहा कि इस मंत्र में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, सकल सृष्टि की जैसे संपूर्ण वृक्ष एक नन्हे से बीज में समाया हुआ होता है, उसी तरह से ब्रह्मांड नायक की शक्ति केवल इस छोटे से मंत्र में है, इसलिए इसे जपता। पर उसे बात को समझ में नहीं आई। जब समझ में नहीं आई तो उन्होंने कहा कि इसे इतनी ताकत है इस मंत्र में कि ये जड़ को चेतन कर दे, जड़ को चेतन कर दे। तो शिष्य ने कहा, महाराज जड़ को ये चेतन कर देगा तो क्या ये नंदी इसको भी चेतन कर देगा? बोले हाँ इसको भी चेतन कर देगा। उन्होंने कहा, तुम अच्छा तो ऐसा करो, नंदी के आगे घास रख दो। नंदी के आगे उन्होंने घास रखवा दिया और स्वयं अपने आप नमः शिवाय जप करने बैठ गए। और शिष्य ने सोचा कि महात्मा लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, कहीं घास को इधर उधर कर देंगे, किसी युक्ति से हमें समझा देंगे। तो इसलिए शिष्य ने सोचा मुझे भी यहाँ से हटना नहीं है, और वो भी वहीं पर जम करके बैठ गए ये देखने के लिए कि क्या सचमुच ये नंदी घास खाता है। और वो नमः शिवाय जप करते करते सुबह से शाम हो गई, मंदिर के पट बंद हो गए और वो खुद भी अंदर बैठा हुआ है और महात्मा जी भी जप कर रहे बैठे। उन्होंने कहा तुम भी जप करो नमः शिवाय, उससे उसे भी जप कराते रहे और खुद भी बैठकर जप करते रहे। मंदिर के पट बंद हो गए हैं, नमः शिवाय जप रहे थे वो, तो जपते जपते रात हो गई। जब सवेरा हुआ तो देखा कि नंदी के आगे जो घास पड़ा हुआ था वो घास वहां पर कुछ भी नहीं है, सामने कोई घास नहीं था। उसे लगा कि ये घास आखिर गया कहाँ, मंदिर के पट बंद हैं, मंदिर के अंदर कोई आया नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं हुआ और कुछ नहीं हुआ, और मंदिर के नंदी के आगे रखा हुआ सारा घास यहाँ नहीं है, खाया गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ और इतने में पीछे की ओर देख झांका उसने तो नंदी के पीछे बहुत सारा गोबर वहां पर जब देखा तो उसे पूरा पूरा विश्वास हो गया कि ये नंदी ने ही ये घास खाया है। तो महात्मा ने उसे ये बताया कि जड़ को चेतन कर देने वाली ताकत, ये ताकत इस मंत्र में है। मंत्र शक्ति, मंत्रों की शक्ति को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इन मंत्र के बल पर मंत्र ताक के बल से बहुत बहुत बड़ी ताकत है, इसलिए सनारण जीवन में परिवर्तन हो सकता है। और इन मंत्रों को श्रद्धा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए और सुनने के साथ साथ मंत्रोच्चारण करना चाहिए, उसका उच्चारण करें शब्द। और उसके साथ जब वो अंदर भीतर की ओर पहुंचता है तो हमारे अंदर वो मंत्र मन को परिवर्तित करता है। इसलिए छोटा सा मंत्र है, इसका सदैव जप करें, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय इति नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, नागों का हार बनाने वाले त्रिनेत्रधारी जो भगवान शिव हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, अर्थात वेदत्रय यही तीन नेत्र हैं, सूर्य चंद्र और अग्नि ये भगवान शिव के तीन नेत्र हैं। और भगवान शिव ती का जो तीसरा नेत्र है ये अग्नि के रूप में है, जो सदैव बंद रहता है। केवल प्रलय काल में भगवान शिव जब जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तब तब सृष्टि में प्रलय हो जाता है। पर याद रखना, ये जो तीसरा नेत्र है, भगवान इस नेत्र से सृष्टि के कार्य को संपादित करते हैं। ये जो तीसरा नेत्र है, अध्यात्म की दृष्टि से थोड़ा सा विचार करें तो ये नेत्र केवल शिव के पास ही नहीं, ये आप सब लोगों के पास भी है। दिव्यम मे ददामि चक्षु, भगवान कहते हैं मैंने ये तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र हम लोगों के पास भी है पर हम इस नेत्र का उपयोग ही नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? बोले इसलिए नहीं करते हैं कि हमें दो नेत्र के उपयोग से फुर्सत मिले तो तीसरे की कहीं सोचें। हमें तो दो के नेत्र उपयोग से ही फुर्सत नहीं मिलती, हम तीसरे के लिए सोच ही नहीं पाते। यदि हम थोड़ा गंभीरता पूर्वक सोचें, जो तीसरा नेत्र है उस नेत्र के ऊपर बंद रखने से ना एक आवरण आया हुआ है, वो नेत्र का आवरण हटे, वो नेत्र ज्योति जो जिसके अंदर दिव्यता है, ज्योति है, वो जागृत हो, उसके लिए वो आवरण कैसे हटाएंगे? बोले वो हटेगा भगवान के नाम का जप करने से। इसलिए मैंने कल ही आपको कहा था कि हमें भगवान की कथा नाम स्मरण सुनना चाहिए, वाणमय महिमा को सुने, ये उनकी कीर्ति को सुने। सुनने से एक बार एक मित्र अपने मित्र से मिलने के लिए गया, देखा मित्र का घर का दरवाजा बंद है, उसने दरवाजे में दस्तखत दिया, दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा बंद है तो इसका मतलब मित्र तो अंदर ही है, दरवाजा खुला नहीं, उसे चिंता बढ़ी। उसने दोनों तरफ देखा कहीं कोई रास्ता दिखे, तो उसे एक छोटा सा दरवाजे के ऊपर रोशनदान दिखाई पड़ा। उस रोशनदान तक वो पहुंचा चढ़कर और दरवाजे के सारे रोशनदान से कमरे में उतर गया। जब कमरे में उतरा तो देखा कि उसका मित्र तो अचेत अवस्था में ज्वर में पड़ा हुआ है। उसने अपने मित्र को जल पिलाया, जल दिया, छींटा दिया, दवाई दी, उसे धीरे धीरे उसका ज्वर उतर गया, मित्र स्वस्थ हुआ। उसने अब अपने मित्र से पूछा, मित्र तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए मैंने दरवाजा तो खोला नहीं था पर तुम कमरे में कैसे पहुंच गए, कैसे तुम कमरे में आए? तो मित्र ने उत्तर दिया कि मित्र दरवाजा तुमने नहीं खोला तो क्या, तुम्हारा ये जो रोशनदान खुला हुआ था ना, इसी से मैं तुम्हारे कमरे में पहुंच गया। भगवान कहते हैं ठीक इसी तरह से, यदि तुमने हृदय का द्वार मेरे लिए नहीं खोला है, बंद है, तो कोई बात नहीं। यदि कानों का द्वार खुला है तो इस कर्ण रंध्र से, कर्ण द्वार से ही मैं तुम्हारे हृदय तक पहुंच जाऊंगा। भगवान को अपने हृदय में लाने का, अर्थात अपने भीतर भगवान को प्रवेश कराने का जो द्वार है वो केवल कान है नारायण, इसलिए सोचना श्रोत्रम इन कानों से भगवान हृदय में आते हैं। कैसे आते हैं? बोले शब्द बनकर। इसीलिए वाणमयिक रूप भगवान का कहा, शब्द के रूप से भगवान आपके हृदय में आएंगे। तो ये शब्द है नमः शिवाय। इस नमः शिवाय शब्द से ही भगवान आपके हृदय में पहुंच जाएंगे, और जब हृदय में भगवान आ जाएंगे तो जीव के जन्म जन्म के अभिमान को, जन्म जन्म की कर्म वासना को, सब को निकाल कर दूर कर, जीव की मूर्छा को दूर कर उसे सचेत कर देंगे। अर्थात भगवान शिव को पा करके, शिव के दर्शन करके, शिव को पहचान करके, इसलिए कि यस्मिन विज्ञातम, जिसके ज्ञान से ब्रह्मेव होती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। वो उस शिव को पहचानने वाला स्वयं शिव स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप ही है। ऐसा आपको उस नाम से बोध होगा नारायण। इसलिए जप में बहुत बड़ी ताकत है, और जप के साथ जो आप बोलते हैं उन शब्दों का अर्थ साथ में लें, अर्थ सहित यदि आप उसे ग्रहण करेंगे तो निश्चय रूप से परम लाभ होगा। यदि अर्थ छोड़ करके, अर्थ को ध्यान में रखे बिना आप केवल जप करेंगे, उससे आपको पुण्य की प्राप्ति तो होगी, पर याद रखना रस की, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और रस कब आएगा? जब आपको अर्थ ध्यान में रहेगा तो निश्चित रूप से उस जप से आपको एक रस मिलेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। तो इसलिए त्रिनेत्रधारी, तीनों नेत्रों को धारण करने वाले ऐसे भगवान त्रिलोचन कैसे हैं? नागिन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंग रागाय, जिन्होंने भस्म को अपने शरीर में धारण किया हुआ है, जो सारे शरीर पर भस्म धारण किए हुए हैं। ये भस्म क्या है? बोले ये भस्म है कि इस असार संसार को, संसार को जब जला दिया तो रहा क्या? बोले रहा केवल एक भस्म ही तो बाकी बची। संसार का सार क्या है? संसार का सार तो केवल एक भस्म है नारा। जो सार रूप को ग्रहण करने वाले हैं, जो संसार के सार को अपने शरीर में जिन्होंने धारण किया हुआ है, अर्थात यही भस्म है। ये भस्म बड़ी पवित्र भस्म है। बोले इस भस्म को जिसे विभूति कहते हैं, भस्म कहते हैं, ये भस्म यूं तो कहने पर हमें बड़ा वो लगता है कि चिदा भस्मालेपो, चिदा का भस्म। वास्तव में आप विचार कर करके देखें, जब शरीर जो पंचभूतों का बना हुआ था और उस पंचभूतों के शरीर को जला करके जब जल गया तो बचा क्या? बोले केवल राख। और उस राख को भगवान शिव ने अपने शरीर पर धारण किया। बोले इतनी अपवित्र वस्तु? नहीं नहीं, ये तो ज्ञान से विचार करो, भस्म के समान पवित्र और कोई दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए दक्षिण में कुछ ऐसी परंपरा है, कुछ शिवोपासक ऐसे हैं कि जो बिना भस्म के जिसका दर्शन अशुभ मानते हैं। अर्थात यहाँ तक कि वहाँ तो ऐसी भी परंपरा है कि चाहे सदु भस्म कौन नहीं धारण करेगी? बोले सब भस्म धारण करेंगे। ये किसके भस्म है? ये जगतपति की भस्म है। जगतपति इसे धारण करते हैं, अर्थात जिसका कोई पति है, माने पति माने जो जिसकी पत रखने वाला है, जो तुम्हें अपनाने वाला है, जिसका कोई नहीं है, अर्थात सधवा स्त्री उस भस्म को धारण करेगी जो विधवा होगी। बोले वो नहीं धारण करेगी, उसका पति ही नहीं है तो कैसे धारण करे? धारण तो वही करेगा जिसका कोई पति परमेश्वर होगा, अर्थात कोई पति होगा। ये इसको एक चिन्ह के रूप में मान लिया गया, इतना पवित्र माना गया। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था, ये पवित्र भस्म, ये जो पवित्र भस्म है, यज्ञादि से प्राप्त होने वाली संसार में जो सत्कर्म है उन सत्कर्मों से जो अवशेष रहता है बाकी बचता है, सारा कर्म किया और कर्म होने के बाद फल हो दे दिया, फल होने के बाद उस कर्म से बचा क्या? बोले केवल भस्म। समग्र कर्मों का जो सार है वो क्या है? बोले वही तो भस्म है। इसलिए जलरीति भस्मम, वायुरीति भस्मम, अग्निति भस्मम, ये सबसे बचा हुआ पृथ्वीति भस्मम, पंच तत्वों से बचा भस्म और सब कर्मों से बचा ये पंच भूतों से बना हुआ शरीर और पंच ज्ञानेन्द्रिय पंचीकृत से बना हुआ है जगत, इन सब का जो सार है वो तो केवल एक भस्म है। जो सार को ग्रहण करने वाले देव हैं, बोले वो कौन है? भगवान शिव हैं। ऐसे शिव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हम सबों के लिए शिव परम कल्याणदायी हो। इन्हीं शब्दों के साथ अभिवाणी को विराम देती, बोलिए हरिओम तत्सत।
0: ओम नमः शिवाय।
3: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
1: Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.

आप घबरा करके कहते हैं कि अरे मेरे घर में चोर आ गया और मेरा सामान ले गया है। अब वहां पर चोर खड़ा है क्या? नहीं, वो तो हफ्ते पहले ही वो सब उठा करके ले गया। लेकिन उन्होंने चोर के द्वारा जो किया गया, जो वो सामान जो रफा दफा कर दिया है, वो कार्य वो दिखा रहा है कि चोर आ गया। वो जो टूटा कबाट है, अलमारी है, वो इस बात को साबित कर देती है कि यहां पर चोर आ चुका है। यदि उनको ढूंढना है तो क्या करेंगे? उसके पद चिन्हों को देखा जाएगा। ये कार्य वो चोर की सिद्धि तो कर देता कि चोर जरूर आया है, चोर बिना चोर आए ये अलमारी टूट नहीं सकती है, सामान जो है रफा दफा और गुम नहीं हो सकता। किंतु वो चोर कैसा है वो देखना चाहे तो उसके पद चिन्हों को देखिए। पद चिन्ह से ये पता चल जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि स्त्री और पुरुष के दोनों के पद चिन्ह में बहुत फर्क होता है। और ठीक है, यदि पुरुष है इस बात का पता चल जाए तो वो छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, इस बात का भी पद चिन्ह से पता चल जाता है। अब यदि ढूंढना है तो क्या करेंगे? उनके पद चिन्ह के ऊपर आप चलेंगे तो वो जहां पहुंचा है वो मिल जाएगा। लेकिन कई बार संभव ऐसा है कि वो पद चिन्हों को मिटा भी दे। किंतु जैसे आजकल जो है विज्ञान का विकास हुआ है, फॉरेंसिक लैब, तो वहां पर जो पदार्थ या हैंडल के ऊपर, जैसे उन्होंने हैंडल तो तोड़ा ही होगा, तो उसके ऊपर कुछ निशान छूट जाते हैं, तो निशान के माध्यम से फॉरेंसिक लैब के अंदर उनका रिसर्च करने पर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो वो पहुंचने का जैसे माध्यम है, वैसे ही जो ओंकार है वो परमात्मा के तक पहुंचने का क्या है? माध्यम है। उनके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उपलब्धि उसके द्वारा हो जाती है, पद चिन्हों के द्वारा उपलब्धि हो जाती है। जैसे भागवत में जो कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा स्यमंतक मणि निमित्तक, तो भगवान ने उस कलंक को मिटा दिया था। सत्राजिति नाम का एक यादव था, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की थी और उपासना से उन्होंने सूर्य से एक मणि पाया था, वो स्यमंतक मणि। अब हुआ क्या कि वो मणि को वो सर में बांध करके वो घूमता रहता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये मणि को सर में बांध करके घूम रहे हो ने, वो तुम्हारे लिए अनिष्ट का कारण हो सकता है, वो तुम उसको छुपा करके रखो, किसी को दिखाओ मत। जो महंगी चीज है वो चारों ओर सबको दिखाते हुए निकलना नहीं चाहिए। जैसे आजकल हो रहा है कि आप सुवर्ण की चैन पहन करके निकलेंगे तो क्या होगा? वो खींच करके चले जाने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो भगवान ने तो उनको ठीक सलाह दी, लेकिन उनको लगा कि देखा ये भगवान के पास सुवर्ण की कोई कमी नहीं है, सुवर्ण की द्वारिका के वो मालिक है, तो मेरे पास एक मणि है वो भी उसके मन में खटकती है, कहते वो भी उससे देखी नहीं जा रही है। उतने में एक दो दिन में हुआ ऐसा कि उनका लड़का वो मणि को सर में बांध करके वो घूमने के लिए चला गया, तो वो लड़का वापस ही नहीं आया। बहुत ही खोज की लेकिन वो वापस नहीं आया, तो वो सत्राजित है ने

0: वो कहने लगा कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की नजर जो है वो मेरे मणि के ऊपर पड़ी थी, इसलिए मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पुत्र को मरवा दिया है वो मणि के लिए। तो धीरे धीरे वो बात जो है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई। होता ऐसा है यदि हम किसी के बारे में कुछ कहे और फिर जिसको कहते उनको हम साथ साथ में ये भी कहते हैं कि तुम इस बात को कहना मत किसी को, यदि ऐसा ही होता तो तुम उनको ही क्यों कहते? यदि वो अकथित ही अकथ्य है, कहने योग्य नहीं है, तो उनको ही नहीं कहना चाहिए? कहने के बाद फिर हम कहते हैं कि तुम उसको कहना नहीं, तो होता यह है कि धीरे धीरे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है। भगवान श्री कृष्ण तक वो बात पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उन्होंने तो मेरे को कलंक लगा दिया, अब वो कलंक धोना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं ये यादवों को तैयार किया कि चलो तुम लोग मेरे साथ साक्ष्य के रूप में देखो, हम मणि को ढूंढ लाते हैं। तो तैयार हो गए सब। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो बच्चों के साथ जो खेल रहा था वो लड़का, उन बच्चों को इकट्ठा किया कि अच्छा तुम बताओ तुम किस दिशा में खेलने के लिए गए थे? तो कहा कि इस दिशा में गए थे। भगवान श्री कृष्ण उस दिशा में सबको लेकर के गए तो वहां देखते हैं काफी दूर जाकर के तो वो लड़का है ना वहां मरा हुआ पड़ा। अब वो देखा कि ये तो यहां मरा हुआ पड़ा है और मणि नहीं है, मणि कहां गया होगा? तो भगवान ने वहां देखा कि घमासान युद्ध हुआ है। लड़के ने भी काफी छूटने का प्रयत्न किया है, देखा पद चिन्ह तो शेर के पद चिन्ह पाए गए। निश्चित हुआ कि शेर ने इस बच्चे को लड़के को मार दिया गया है और वो शेर मणि लेकर के भाग गया। अब शेर को कहां ढूंढे? तो उनके पद चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े भगवान। वो काफी दूर तक गए तो देखा कि शेर भी वहां मरा हुआ पड़ा। भगवान ने देखा कि शेर भी यहां मरा पड़ा हुआ है और मणि नहीं है। अब किसने शेर को मार दिया होगा? तो जो है पास में देखा कि शेर का किसी के साथ घमासान युद्ध हुआ है और वहां पद चिन्ह को देखे तो पाया गया कि भालू के ये पद चिन्ह है। अब किसी प्राणी के है समझ लो। तो वो पद चिन्ह को देखते हुए वो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए तो वो पद चिन्ह जो है एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। भगवान ने सबको कहा कि इस गुफा के अंदर वो है, वो वहां जाना पड़ेगा। तो ये साथ वाले सब कहने लगे कि नहीं, हम ये अंधेरी गुफा में नहीं आएंगे, आपको कलंक लगा है, आप जाइए अंदर। भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग यहां बाहर खड़े रहो, मैं अभी अंदर जाता हूं। भगवान अंदर गए, काफी दूर गए अंधेरी गुफे में। तो वहां गए तो थोड़ा सा एक जगह प्रकाश दिखा। जैसे वो नजदीक गए तो एक लड़की वो मणि के साथ खेल रही है। भगवान अभी जाकर के वहां खड़े रहे, कुछ बोले उससे पहले अंदर से कोई वो प्राणी आ गया और सीधा भगवान के ऊपर अटैक कर दिया और बड़ा घमासान युद्ध हुआ भगवान के साथ। वो भालू थे तो उन्होंने देखा कि ये मनुष्य है, मेरे से परास्त क्यों नहीं हो रहा? फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो और कोई नहीं, मेरे इष्ट देव भगवान राम ही है। वो राम ही तो कृष्ण रूप में है। तो फिर जो है उन्होंने क्षमा याचना की और प्रायश्चित के तौर पर कहा कि आप ये मणि भी ले जाइए और साथ साथ में ये जो मेरी बेटी है वो भी मैं आपको देता हूं। जामवंती भगवान की एक पटराणी है कि नहीं, जामवंती। वो भालू कौन है? वो जामवान, जो रामायण में भगवान राम का जो कार्य किया था वो। तो ये कहानी के द्वारा जो है बात ये स्थापित होती है कि पद चिन्ह के द्वारा यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे वो मणि को पाया गया, वैसे ये आत्मा रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए जैसे आप एक एक जो कोश है उस कोश को आप उसके अंदर अनित्य बुद्धि और शरीर अनात्म बुद्धि करते हुए चले जाएंगे तो वो अंत में जाकर के वो आत्मा तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ओंकार है ना, वो ब्रह्म का कोश है। इसलिए ब्रह्मणः कोशोऽसि, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए वो आलंबन है। इसलिए कहा गया कि हे ओंकार, आप ही ब्रह्म का कोश है। इसलिए हम शब्दात्मक जो है वर्ण का समूह अकार उकार मकार से हम प्रार्थना नहीं कर रहे, किंतु ये ओंकार जिसकी उपलब्धि का स्थान है उस परमात्मा से प्रार्थना हुई, जड़ ओंकार से नहीं, अचेतन ओंकार से प्रार्थना नहीं हुई। किंतु अचेतन जो प्रणव है उसका जो वाच्य और लक्ष्य परमात्मा है वो उनकी प्रार्थना हुई। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं तो क्या पत्थर मान करके पूजा करते हैं? नहीं, ये शालिग्राम विष्णु है, विष्णु मान करके पूजा करते हैं तो फल देने वाले कौन है? पत्थर फल देंगे क्या? वो शालिग्राम भगवान फल देंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसे यदि हम ओंकार से प्रार्थना करते हैं तो ओंकार है वो अचेतन है तो वो फल नहीं देंगे, किंतु ओंकार से अभिलक्षित उपलक्षित जो परमात्मा है वो हमको फल देने वाले है। फल देने वाले कौन है? परमात्मा है। इसलिए आखिर में परमात्मा से प्रार्थना हुई। दूसरी बात इसमें कही गई, देखो, मेधया पिहित, ये ओंकार कैसा है? मेधया पिहित है। देखे अभी जैसे बात हुई कि ओंकार के लिए कहा गया कि आप ब्रह्मण कोशोऽसि, आप कोश है, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, तो फिर सब लोग जो है ओंकार की उपासना क्यों नहीं करते? ओंकार के माध्यम से परमात्मा दर्शन क्यों नहीं कर लेते? यदि श्रेष्ठ है तो जो श्रेष्ठ है उनका तो अनुकरण करना चाहिए, वही जो है आश्रय लेना चाहिए। तो कहा कि सब लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहा मेधया पिहित, हे ओंकार आप मेधा से पिहित है। मेधा से अभिप्राय लौकिक प्रज्ञा, आप लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है। लौकिक प्रज्ञा से अभिप्राय सामान्य लोक है, उनके द्वारा आप आच्छादित है। सामान्य जन व्यक्तियों को इस बात का पता नहीं है कि ओंकार की उपासना से परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात की प्रसिद्धि नहीं होने से सब लोग ओंकार की उपासना नहीं करते हैं। अब लोग देखो किसकी उपासना करते हैं? लोग जो है धर्म परलोक और इन उपासनाओं के लिए वो खुद जो है प्रमाण का विचार नहीं करते। सब लोग ज्यादातर अधिकतर लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। और आप लोग ये देखते हैं धर्म के बारे में तो खास ये है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं, अधिकतर लोग जो है किसकी उपासना करते हैं, तो फिर वो और लोग भी जो उनके पीछे पीछे वो चले जाते हैं, प्रमाण का विचार नहीं करते, इसलिए फिर वो फल को नहीं पाते हैं। इसलिए जिसका शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है ऐसी मनगढ़ंत मनुष्य बुद्धि परिकल्पित उपासनाएं करते हैं, इस प्रकार की उपासना का और कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और फिर दोष भगवान को देते हैं, सिस्टम को देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, सब फालतू तो है, इसमें कुछ होता नहीं है, कहते ऐसा लोग कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उपासना का जो माध्यम है वो सही चुनते हैं, लेकिन हम जो है ढंग से करते नहीं है। जैसा विधान बताया गया है उसी प्रक्रिया से हम यदि नहीं करते तब भी हम फल को नहीं पाते, और दोष जो है हम उस माध्यम को देते हैं, कर्म और उपासना को देते हैं कि ये तो व्यर्थ है, इससे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है, आम जनमानस के लिए है नहीं। इसलिए सामान्य प्रज्ञा के द्वारा आपका ज्ञान संभव नहीं है, विशेष प्रज्ञा चाहिए, विशेष कोटि चाहिए। जो आगे बढ़ा हुआ है वही इस बात को, जो आगे बढ़ा हुआ है अभिप्राय है, जो ये प्रमाण मूलक सत्संग कर रहा उनको ये बात समझ में आती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं। जैसे हमारे यहां जो सत्संग हो रहा है वो कैसा प्रमाण मूलक सत्संग है, यहां कोई परिकल्पित नहीं है, और सामान्य मनुष्य का ये अभ्यास है कि वो कोई लाभदायक या कोई फल को लालच देकर के बताया गया है तो उसकी ओर जो है व्यक्ति ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी समझना चाहिए धर्म और ब्रह्म के विषय में तो खास प्रमाण मूलक विचार करना चाहिए, जो अप्रामाणिक है उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए कहा कि मेदया पिहित लौकिक प्रज्ञा से ये ओंकार जो है वो ज्ञातव्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा उनका ज्ञान संभव नहीं है। फिर आगे एक बात और कही गई ओंकार से कि मैं श्रुतम गोपाय, अंत में ने श्रुतम मैं गोपाय, ये जो अंतिम जो पंक्ति है उसको आप यदि क्रम में लगाएंगे शब्दों को तो ऐसा होगा मैं श्रुतम गोपाय, मैं यानी मम, श्रुतम यानी जो श्रवण पूर्वकम अधीतम, श्रवण पूर्वक मैंने ये जो उपनिषद का जो अध्ययन किया है वो गोपाय, गोपाय का अर्थ है विस्मृत्यादि निवारणेन पालय। ओंकार से प्रार्थना की गई कि मैंने जो अध्ययन किया है श्रुतम यानी जो मैंने श्रवण किया है, आपने मेरे को अधिक श्रवण शक्ति दी, क्योंकि पहले ये मांगा गया ना कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्ण के द्वारा कान के द्वारा मैं बहुत सुनूं, तो ओंकार की कृपा से हमने ये जो है उपनिषद का श्रवण किया, श्रवण यानी अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य पूर्वक, सभी वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य है, यहां तक का श्रवण वो यदि हमने किया तो वो किया हुआ श्रवण वो विस्मृत न हो, उसका क्या स्मरण हमको बना रहे। तो अंत में ये ओंकार से कहा गया कि मेरे द्वारा ये जो अधित ये जो अध्ययन हुआ है श्रवण पूर्वक जो अध्ययन हुआ है वो गोपाय यानी कभी उनका विस्मरण न हो, और विस्मृत्यादि निवारणेन पालय, आप इस तरह से मेरा पालन करें, वो आकर के ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ जैसे तुमको नहीं होगा वो नहीं देखेंगे, अभिप्राय है कि इस तरह से मेरा पालन हो यानी मेरी मेधा शक्ति होगी तो मेरे को इस बात का स्मरण रहेगा, और स्मरण रहेगा ओंकार की उपासना करे और अंतिम श्वास तक ये जो है हमारा क्रम बना रहे तो मृत्यु के समय भी आप मेरे को स्मरण रहे, क्योंकि मृत्यु के समय यदि विस्मरण हो गया तो कठिन हो जाएगा, और स्मरण उसी बात का रहता है जिसका अभ्यास किया हुआ है। इसलिए यहां इतना ही नहीं समझे कि केवल स्मरण रहे, स्मरण रखने के लिए अभ्यास भी चालू रहे, और ये बिल्कुल बात निश्चित है कि जिस विषय का हम अभ्यास करते हैं ना तो वो जो है वो स्मृति भी मृत्यु के समय उसी की रहती है। संकट आने पर पता चल जाता है कि हमारा अभ्यास किस विषयक है। उस समय भगवान याद आए तो समझना कि उनका स्मरण यही है, और नहीं तो कोई पति पत्नी सगा संबंधी याद आ जाते हैं, वो कोई रक्षा करने वाले। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ यदि शरीर छोड़ता है तो वो मेरे को प्राप्त होगा। क्यों ऐसा है तो भगवान कहते हैं वो सदा तद्भाव भावित, स्मरण मृत्यु के समय उसका रहेगा जिसका अभ्यास हुआ है। भगवान कहते हैं यदि मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे भाव से वो सदा भावित था, जीवित अवस्था दरमियान भी वो मेरा ही स्मरण करता था, इसलिए मृत्यु के समय वो मेरा स्मरण उनको होगा। सदा तद्भाव भावित, अभ्यास उन्होंने उन्हीं का किया हुआ। यदि संसार का अभ्यास है, धन का अभ्यास है, तो मृत्यु के समय धन याद आएगा। देखिए जो धन के लोभी है उसका यही हाल होता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो दुकान चला रहा था, बढ़िया दुकान चल रही थी। अब हुआ ये कि वो वृद्ध हो गया, उनके बच्चे भी योग्य हो गए, दुकान चलाने योग्य हो गए, तो वो खुद जो है कभी कभी जाया करता था, और चार बच्चे थे, वो चारों बच्चों जो है वो दुकान को बढ़िया से चला रहे थे। अब वो जो सेठ है उनकी जब मृत्यु की घड़ी उपस्थित हुई तो मुमूर्षु होकर के वो मृत्यु शैया पर वो सो रहा है। अब लड़कों को लगा कि अब ये रहेंगे नहीं, अंतिम श्वास गिन रहे। तो उस समय जो लड़का वहां पर उपस्थित था उन्होंने अपने और जो तीनों भाई थे उनको भी बुला लिया कि मृत्यु के समय चारों बच्चे उनके सामने उपस्थित रहे तो अच्छा। तो वो भी आ गए तुरंत, फटाफट दुकान बंद करके आ गए और चारों वहीं पे आकर के इर्द गिर्द खड़े हो गए। अब वो जो मुमूर्षु वृद्ध जो है पूछ रहे नाम लेकर के कि अमुक नाम वाला लड़का कहां है, तो वो बोला कि मैं पिताजी यही हूं आपके सामने, और दो का नाम लिया। तो दोनों ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं, और चौथे लड़के का नाम लिया। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि पिताजी मैं यही उपस्थित हूं, ऐसा सुनते ही वो बोले कि तो दुकान पर कौन है, कहते और श्वास छूट गए। अब वो कहां जाएंगे बताइए, उनका जन्म कहां होगा, दुकान में, क्योंकि अभ्यास उन्हीं का था। इसलिए परमात्मा का, इसलिए जो है हमको अभ्यास यही करना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा में रहे तो मृत्यु के समय भी यही होगा। तो इस तरह से मृत्यु के समय भी विस्मरण न हो, इस तरह से ये बहुत ही दिव्य प्रार्थना है, उसका अवश्य पाठ करते रहना चाहिए। पाठ करने से अवश्य हमको इस प्रकार का जो है वो जैसे बताया गया लाभ वो मिल सकता है। ओम तत्सत।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। In this, you are about to listen Mandaka Upanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
3: Om Tat Sat. Tau Tattvam Na Janami Kidrushosi Maheshwara Yadrushosi Mahadeva Tadrushaya Namo Namah. Yo asau so aham yajami. Om Tat Sat Brahmane Namah. Jagradadi Triyonamuktam Jagradadi Mayam Tatha Aumkar Ek Susamvedyam Yat Padam Tan Namamyaham. ओम शांति. मांडूक्य उपनिषद के माध्यम से ऋषि इस बात का निर्देश करते हैं कि जब तक इंसान अपने सही स्वरूप को नहीं पहचानता, और उपनिषद में पहचानने का अर्थ जानना और मानना भी है. केवल आंखों से देख के हम कुछ पहचानते हैं, लेकिन समग्रता से वो हमारे जीवन में ढल जाए ये नहीं होता. तो स्वरूप, पहले तो स्वरूप ही अपने आप में एक ऐसा शब्द है. स्वरूप का अर्थ ही इतना होता है जो इंद्रियों की पकड़ में ना आए, और रूप उसे कहते हैं जो इंद्रियों की पकड़ में आ सके. और स्वरूप का अर्थ होता है अपना सही रूप क्या है. तो जब तक हम उस परम, इसी को परम तत्व भी कहते हैं. संक्षेप में आप ऐसा समझ लो कि जो कुछ भी हम चाहते हैं, सचमुच में जो कुछ भी हम चाहते हैं, वो हमारे अपने पास ही है. वो स्वरूप उपलब्धि ही है. ये ना जानने के कारण हम और इधर उधर वस्तुओं में उलझे रहते हैं, और जब स्वरूप उपलब्धि, स्वरूप का पता लगता है, तो फिर सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है जो भी हम करना चाहते हैं. इसीलिए उपनिषदों में इस बात का निर्देश किया गया कि हमें उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं बचता. हमें उसे जानने का प्रयत्न करना है जिसको जानने के बाद फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं. जिस एक के ही जान लेने से सब कुछ जानना हुआ हो जाता है, उसको जानना, और उसी का ही पारिभाषिक शब्द स्वरूप है कि स्वरूप को जानने. इसी को ही मैं का अनुसंधान भी कहते हैं, अहम को जानने के. अहम क्या है? अर्थात हमारा ये जो शरीर है, पूरे का पूरा हम विश्लेषण करें, ये हाथ पैर आंख नाक मुंह बुद्धि चित्त, ये सब चीजें मिलाकर भी एक एक को लेकर ये विश्लेषण करते हैं कि क्या मैं ये हूं, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या मैं ये हाथ हूं, आंख हूं, क्या हूं मैं. और फिर इसी का बात करते जाते हैं कि मैं इसको जानने वाला हूं, मैं इसका देखने वाला हूं, इसलिए ये मैं नहीं. इस उपनिषद में तीनों अवस्थाओं के माध्यम से अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से ये बतलाया गया कि जागने वाला स्वप्न देखने वाला और सो जाने वाला अपना स्वरूप नहीं, ये तो अंतःकरण बुद्धि का काम है और जो हमेशा जागता रहता है उसको आत्मा कहते हैं। वो आत्मा ही अपना असली स्वरूप है। तो आत्मा को समझाने के लिए, हालांकि ये भी सभी शास्त्र कहते हैं कि वो समझ से बाहर है, अगर वो भी बुद्धि की पकड़ में आ गया तो फिर तो जो जो बुद्धि की पकड़ में आएगा उसको जाना जा सकता है, जो जाना जा सकता है वो परिवर्तनशील है, बदलने वाला है, और जो बदलने वाला है वो नाशवान है। इसलिए बुद्धि की पकड़ में कुछ आ जाए, कल्पना में कुछ आ जाए, मन में कुछ आ जाए, तो वो समझ लो कि वो सब दृश्य कोटि में है। दृश्य का मतलब होता है जिसे हम, जो हमारे से अलग हो और हम उसे दूर से देख रहे हैं या समझ रहे हैं। स्वप्न के भी दृश्य ही होते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो चीज भी दृश्य होगी वही समझ में आ सकती है, और जो समझ में आ जाएगी वो स्थायी नहीं, वो नाशवान। ये एक सिद्धांत है अटल, और उसी को ही समझने के लिए कुछ इशारे मात्र हैं। इशारे मात्र ये हैं कि जो कुछ वो नहीं है उसको नकार से चले जाओ कि वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं, वो ये भी नहीं। ये एक प्रक्रिया है जो इस उपनिषद के सप्तम श्रुति से बात समझाई जा रही है। इसका सातवां मंत्र था जिसका हमने थोड़ा अर्थ बीच बीच में कर देते हैं। न अंतः प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, न प्रज्ञान घन, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। इसका अर्थ केवल इतना ही है कि ना वो तत्व जो है उसमें बाहर मुखता अंतर्मुखता नहीं होती कि वो बाहर मुखी है वो अंतर्मुखी। देखो, बाहर और अंदर के बीच में कोई ना कोई एक रेखा चाहिए, कोई ना कोई एक दीवार चाहिए जिसको हम देख के कहें वो बाहर है मैं अंदर हूं। बाहर और अंदर परिच्छिन्न वस्तु में कल्पित है। परिच्छिन्न वस्तु में कल्पित है का अर्थ ये है कि जैसे हम इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये हम कमरे के अंदर हैं और कमरे के बाहर की हम कल्पना करते हैं कि वो बाहर है। कोई भी चीज, कार जा रही है, कुछ और जा रहा है, तो हम कहेंगे हम अंदर हैं, कार बाहर। लेकिन जब कमरे को देखेंगे तो पूरे का पूरा कमरा बंबई में है, बंबई के अंदर है। हम ऐसा कहेंगे कि ये कमरा या ये आश्रम बंबई के अंदर है और उल्हासनगर बाहर है। तो अब बाहर अंदर जो अभी तक इस कमरे को ध्यान में रखते हुए हम कह रहे थे, अपने को केंद्र मानकर हम कह रहे थे कि मैं अंदर हूं वो बाहर, अब थोड़ा सा आपकी व्यापकता हुई तो पता लगा कि कमरा भी अंदर है और बाहर उल्हासनगर। फिर महाराष्ट्र की दृष्टि से नजर करोगे तो आपको लगेगा कि उल्हासनगर भी अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, अमृतसर बाहर। और अगर देश की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो फिर अमृतसर भी अंदर है और लाहौर बाहर। ऐसे ही अगर आप पूरी दुनिया की दृष्टि से सोचोगे तो सारी दुनिया ही अंदर है और बाहर फिर आप आकाश को कह सकते हो थोड़ी देर के लिए। और अगर आप ब्रह्मांड की दृष्टि से नजर करोगे तो फिर आकाश भी और महातत्व भी, ये सब कुछ अंदर ही अंदर है। ऐसा करते करते अंततः बाहर कुछ नजर रहना नहीं। तो बाहर और अंदर की जो एक कॉन्सेप्ट है, बाहर और अंदर की जो एक अवधारणा है, मान्यता है, वो असलियत नहीं मानी हुई है। देखो, अगर हम ये कहें कि आत्मा अंदर भी है और बाहर भी है, ये आत्मा के बारे में बात हो रही है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम। लगता ऐसे है कि जैसे हम जाग रहे हैं तो हमारी प्रज्ञा बाहर के विषयों को अपना अध्ययन का आधार मानकर तो बाहर जाती है, बाहर की चीजों को हम जानते हैं, इसलिए बहिष्प्रज्ञा कह दिए। जब हम स्वप्न देखते हैं तो सब कुछ अपने अंदर ही है, इसलिए उसको अंतः प्रज्ञा कह दी। अब वास्तविकता ये है कि बाहर और अंदर, अगर आत्मा हमारे अंदर है और आत्मा हमारे बाहर है, तो फिर बीच में क्या है? अंदर और बाहर की बात ठीक है, आप सोच लो थोड़ी देर के लिए। तो अंदर और बाहर का जब भी आप ध्यान करेंगे, अंदर और बाहर के जब भी आप इस परिकल्पना पर चिंतन करेंगे, तो अंदर और बाहर तो बीच में कुछ आए तो तभी है। देखो, आप ऐसा समझ लो कि एक मुट्ठी बंद करते हैं हम, मैं कहता हूं कि आकाश इस मुट्ठी के अंदर है और आकाश इस मुट्ठी के बाहर भी है, और फिर आप ये देखोगे कि मुट्ठी स्वयं आकाश में है, अंदर बाहर कुछ नहीं है। मुट्ठी को हम ऐसे बंद करके यहां रखें तो मेरी मुट्ठी में भी आकाश, मुट्ठी के बाहर भी आकाश, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये मुट्ठी ही आकाश में। शास्त्र की भाषा में कहते हैं मुट्ठी नाम की कोई चीज नहीं है, आकाश में कल्पित है। एक पॉइंट बना लिया हमने बात करने का अंदर बाहर करके, क्योंकि व्यवहार चलाना है। वस्तुतः आकाश में कुछ कल्पित होता ही नहीं, आकाश ही आकाश, ये आकाश ही है। और ये बात भी ठीक ही है कि अंत में रहना आकाश नहीं है, ये मुट्ठी नहीं थी तब भी आकाश था, मुट्ठी नहीं रहेगी तब भी आकाश रहेगा, और मुट्ठी के होते हुए भी ये आकाश ही है। जो इस बात को जान गया वो निकल गया संसार से। जिसके अनुभव में ये बात आ गई, जिसके अनुभव में परम चेतना में सब कल्पित है, ऐसा आ गया तो उसकी नजर चेतन चेतन पर ही रहेगी, कल्पित पर नहीं रहेगी। कल्पित पर रहेगी भी तो पता रहता है कि ये कल्पित है, वास्तविक नहीं, वास्तविक तो आकाश ही है। मुठियां तो पता नहीं कितनी इसमें बनी कितनी गई, लेकिन ये वैसे का वैसा ही है। इसलिए मुट्ठी से तादात्म्य स्थापित कर कि ये छोटी है, ये बड़ी है, ये अच्छी है, ये बुरी है, ये सफेद है, ये काली है, तो हम राग द्वेष में फंस जाते हैं। चेतन के विवर्त की परिकल्पना को सत्य मानकर हम राग द्वेष में फंसते। बात केवल इतनी ही है कि राग द्वेष रहित जीवन हो जाए, और शास्त्र का कोई अभिप्राय नहीं। चेतन की अनुभूति हो जाए, वो हो जाए अच्छी बात, लेकिन संसार में कोई हर रोज बुद्ध पैदा नहीं होते, ज्ञानेश्वर हर दिन कोई पैदा नहीं होते, हो गए कभी फिर होंगे, लेकिन आम आदमी के लिए वो आदर्श है। और शास्त्र का अभिप्राय राग द्वेष से रहित होकर जीवन जीना, कि ये हमारे जीवन में से राग और द्वेष निकल जाए। जिसको हम राग और द्वेष कहते हैं, इसी को ही आम बोलचाल की भाषा में काम और क्रोध कहते हैं। ये काम और क्रोध जीवन में से निकले तो बस जीवन सुगम हो जाता है। ये निकलने के बाद संसार की सत्यता भी नजर आ जाए कि जो कुछ भी हो रहा है। देखो, अब जब तक हम चीजों को सत्य मानते हैं तब तक राग द्वेष रहता है, जब इन चीजों को हम चेतन में कल्पित मानते हैं, जब तक हम ये मानेंगे कि मेरी मुट्ठी के अंदर आकाश है और मुट्ठी के बाहर भी आकाश है और मुट्ठी बीच में सत्य है, आकाश में बाधा बन रही है। आकाश एक ऐसा हमारे निकटतम एक वो तत्व है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आत्मा को समझाने के लिए इसीलिए बार बार आकाशवत ये शब्द आता है। आकाशवत ही है लेकिन आकाश भी उसको नहीं समझा सकता। इसको हम इसलिए आकाश को लेते हैं क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसको बांटा नहीं जा सकता। ये इसका कितना भी हम करें विवेक करोगे तो पता लग जाएगा आकाश एक ही है और बाकी इसमें ये दीवारें इसमें घर ये कल्पित। कल्पित का मतलब व्यवहार चलाने के लिए कि ये इतने में आप रह लो, इतने में वो रह ले, इतने में ये कर ले, लेकिन ये है कल्पित ही, ये बदलते ही रहेंगे। अगर इतिहास को देखें आप तो पूरे देश का इतिहास, कभी कोई राजा बना, कभी कोई बना, कभी कोई बना, कभी कोई बना, और आज भी आप पुराने राजमहल देखने जाओ, अब तो लोग टूरिस्ट प्लेसेस बन गई हो, और वहां कल्पना करो कभी कौन कौन वहां था, कभी उन राजमहलों के 10 किलोमीटर आसपास कोई आम आदमी जा नहीं सकता था, चला जाए तो मृत्यु दंड मिलता था। आम आदमी आज उन्हीं महलों में, वो जो उनके प्राइवेट रूम थे उनमें जाके बैठ के चाय पीते हैं। तो इस तरह से ये बदलने वाली चीजें, बात कुल ये है कि कभी वो था आज ये है, कल को कुछ और होगा ये होगा, तो इसमें से सत्य किसको मान ले। इसलिए ना तो बहिष्प्रज्ञ को सत्य मानो ना अंतःप्रज्ञ को सत्य मानो, ये बात यहां कही गई है। वृत्तियां बाहर मुखी हों या अंतर्मुखी हो, दोनों बराबर हैं। उपलब्धि की दृष्टि से भी बराबर हैं। बाहर मुखी होकर भी जो जो हम प्राप्त करते हैं और अंतर्मुखी होकर भी जो प्राप्त करते हैं, सो जाने पर दोनों ही नहीं रहते, बराबर हो गए। या ये हो कि सो जाने पर जागृत की चीजें हमारे साथ रह जाती हों या स्वप्न की साथ रह जाती हों, तो फिर एक को सच मान ले, एक को झूठ मान ले। लेकिन ये होता है कि जिस समय हम सो गए तो ना जागृत में प्राप्त की हुई चीजें रहती हैं, ना स्वप्न में चीजें प्राप्त की हुई रहती। जागृत के शत्रु और मित्र भी नींद में खत्म हो जाते हैं और स्वप्न के शत्रु और मित्र भी नींद में खत्म हो जाते हैं। जब दोनों की हकीकत इतनी ही है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं, तो फिर एक को महत्व देना और दूसरे को गौण समझना ये केवल बुद्धि का भ्रम मात्र है, असलियत नहीं। और फिर उसके साथ ही साथ ये भी बात है कि जब हम जाग जाते हैं तो नींद वाली चीजें नहीं रहती। नींद में जिस आनंद का हमने भोग किया, नींद में जिस सुख का हमने अनुभव किया, वो जागने पर नहीं रहता। तो इसलिए जो भौतिक उपलब्धियों की दृष्टि से, प्राप्त करने की दृष्टि से, ना जागृत में प्राप्त किया हुआ साथ में रहेगा और ना ही स्वप्न में प्राप्त किया हुआ साथ रहेगा और ना ही नींद में प्राप्त किया हुआ जिसको हमने चेतोन्मुख आनंद भूक ऐसे शब्द का प्रयोग किया। तो नींद में जिस आनंद को जिस सुख का अनुभव किया था, जागने पर वो नहीं, जागने पर फिर वही क्लेश शुरू हो गए जो थे। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका कोई सार नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। तो फिर महत्व किसका है? बात ये आ गई कि जब इन सब का महत्व नहीं, ये एक तमाशा सा है, तो महत्व किसका है? शास्त्र ने कहा कि महत्व उसका है जो इन तीनों अवस्थाओं में एक जैसा रहता है। वो ना स्वप्न देखता है, ना जागृत में चीजें प्राप्त करता है और ना ही वो नींद में अज्ञान में लीन होता है। वो है आत्मा। तो उस आत्मा के लिए ये बात कही जा रही है, ना अंतः प्रज्ञा ना बहिष्प्रज्ञा ना उभयतः प्रज्ञा ना प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम। वो केवल अज्ञान रूप हो ऐसा भी नहीं है, केवल वो बाह्य मुखी हो ऐसा भी नहीं है, केवल वो वैसा हो वैसा भी नहीं। उसी को थोड़ा समझाने के लिए इसी ही श्रुति में यह कहा, अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशेयम एक आत्म प्रत्यसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। इसमें ये बात कही गई है कि वो अदृष्ट है, वो दिखलाई नहीं देता, वो अव्यवहार्य है, उससे व्यवहार नहीं किया जा सकता और वो भी व्यवहार नहीं करता किसी से। अग्राह्य, उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता और वो भी किसी को ग्रहण नहीं करता। उसका कोई लक्षण नहीं है और ना ही वो किसी को लक्षित करता है। उसको उपदेश करके समझाया नहीं जा सकता और ना ही वो स्वयं समझाता है। व्यपदेश वो है क्या? एक आत्म प्रत्यसारम। एक आत्म प्रत्यसारम का मतलब है कि वो हमेशा एक रस रहता है। एक रस, देखो हमारी बुद्धि एक रसता को नहीं पकड़ सकती। एक रसता को नहीं पकड़ सकती का अर्थ ये है, आप ये समझ लो कि अगर जैसे हम सब बैठे हैं, किसी तरह से सबकी शक्ल एक जैसी हो जाए, कोई रत्ती भर किसी में कपड़े भी एक जैसे, शक्लें भी एक जैसी, पूरे बंबई में जितने भी लोग हैं, हर एक की शक्ल, कपड़े, चलना फिरना एक जैसा हो गया, एक जैसा हो गया तो आप स्वयं कल्पना करो क्या पहचानोगे, क्या करोगे? अपनी पहचान ही नहीं रहनी कि मैं ये हूं कि ये सामने वाला। तो एक ये मोटे तौर पर आपको बात कही। एक आत्म प्रत्यासार का मतलब, प्रत्यय शब्द एक बहुत सुंदर और चिंतनीय शब्द। प्रत्यय शब्द देखो, जैसे फर्ज करो ये टेबल मेरे सामने पड़ी है, मेज है, आप देख रहे। आप में से किसी को भी पूछा जाए कि क्यों जी इस मेज से बढ़िया कोई और मेज है कहीं या नहीं, तो हर एक कहेगा कि इससे बढ़िया मेज है, उसे कहो ले आओ जो बढ़िया। वो जो बहुत बढ़िया मेज है वो यहां लाके रखो और फिर उसी प्रश्न को दोहराओ कि क्या इस मेज से बढ़िया कोई बन सकती है या नहीं। आप कहोगे बन सकती है, उन्हें कहो फिर बनवा लो। आप दुनिया भर के कारीगर मंगवाओ, कहीं से भी मंगवाओ, पूरी धरती के कारीगर हों या दूसरे नक्षत्रों से, आप कहो कि ये मंगल ग्रह से आया है, बनाएगा ये, और विश्वकर्मा स्वयं आ जाए सचमुच में और आपको भी विश्वास हो कि ये विश्वकर्मा ही है, और विश्वकर्मा उसको बनाए मेज को और बना के चला जाए, फिर भी आम आदमी से भी पूछो कि क्या इससे बढ़िया मेज बन सकती है या नहीं, कोई भी कहेगा इससे बढ़िया बन सकती है। तो जब अंतम जो जोर लगता था, बना भी बैठे, कर भी बैठे, शाहजहां ने तख्ते ताऊस बनवाया लाल किले में, बड़ा प्रसिद्ध था उस समय का कि उस टाइम पर तख्ते ताऊस जो बाद में अंग्रेजों ने तोड़ा, उसमें कोहिनूर हीरा था वो ले गए, उसकी एक अपना इतिहास। या लोग जिसको देखने जाते हैं, अब ताजमहल, आपको कोई कहे कि क्या ताजमहल से अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं है? आप सभी, कोई भी ऐसा नहीं है जो ये माने कि ये अंतम बिल्डिंग है, इससे सुंदर कोई नहीं। लोग कहते हैं इससे अंतम तो चलो अमिताभ का बंगला ही इससे ज्यादा अच्छा। तो किसी का भी आप देखो, सोचो कि अंतम बात जो आप कहो बनाने के बाद, फिर भी पूछा जाए कि क्या इससे बढ़िया कुछ है या नहीं, तो आप कहोगे कि इससे बढ़िया है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस चीज को आप समझते हो कि इससे बढ़िया भी बन सकती है, इसका अर्थ है कि जो मेरे सामने है उसमें कोई ना कोई कमी है, तभी तो हम कहते हैं कि इससे बढ़िया भी कोई बने। अगर सामने वाली चीज में कोई कमी ना हो, परिपूर्ण हो, पूर्ण हो अपने आप में, तो आप उसको कभी कह नहीं सकते कि इसमें कोई कमी है। तो जिसको भी आप ये सोच रहे हो कि इससे भी बढ़िया बन सकता है, वो है कहां जो बढ़िया बन सकता है? तो वो जहां कहीं भी है, आपकी बुद्धि में हो, आपकी भावनाओं में हो, आपके तन में हो, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के रूप में वो पूर्ण है, अन्यथा पूर्ण नहीं है। जो कुछ भी है, जो इन इंद्रियों के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से जहां तक भी पहुंचोगे, वो पूर्ण नहीं। तो शब्द जितने भी हैं हमारे, कोई भी कुंभ कूप तक पहुंचे इतना कर सकती है डोर। शब्द जो भी हैं, ये हमें वहां तक ले जा सकते हैं, बस कुएं तक, लेकिन पानी में डुबकी लगाना, ये करना, ये शब्द नहीं लगवा सकते। शास्त्र इस बात की दूसरी तरह से व्याख्या करता। ऋषि ये कह रहा है कि जो आपको हर चीज लगता है कि इससे भी बढ़िया है, इसका अर्थ है कि वो चीज पूर्ण नहीं है, और आप पूर्ण हो, आप पूर्ण हो अपने आप में, इसलिए आपको बाहर जो भी देखेगा अपूर्ण लगेगा, क्योंकि पूर्ण के अतिरिक्त किसी भी चीज को कोई अपूर्ण कह नहीं सकता। अब ये उपनिषदों का चिंतन, अपनी पूर्णता का एहसास, जिस दिन ये बात पता लग जाए, अपनी पूर्णता का एहसास, देखो जब तक हम कुछ भी चाहते, कोई भी चीज चाहते हैं, किसी व्यक्ति को चाहते हैं, किसी वस्तु को चाहते हैं, जितना जितना आप चाहते हो उतने उतने आप अपूर्ण।
2: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, the 24/7 spiritual channel from shaivam.org. Om Namah Shivaya.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: वेद पाठाः यजुर्

वो वत्सविता सविता प्रप्रसविता सविता प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय अर्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्यायध्वं प्यायध्वमाप्यायध्वं प्याय

तदियमियमगात् अगाद्धिषण धिषणागादगाद्धिषण धिषण बरेहिर्बरेहिर्धिषण धिषण बरिहिः बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छ अच्छमनुना मनुनाच्छाच्छ मनुना मनुना कृता कृता मनुना मनुना कृता कृता स्वधया अस्वधया कृता कृता स्वधया अस्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया अस्वधया वितष्टा स्वधयेति स्वधया अवितष्टा ते ते वितष्टा वितष्टा ते वितष्टेति वितष्टा त आ ते त आवहन्ति वहन्त्यावहन्ति वहन्ति कवयः कवयो वहन्ति वहन्ति कवयः कवयः पुरस्तात् पुरस्तात् कवयः कवयः पुरस्तात्।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Maharaja Bhartrihari ne likha hai, काकोपि जीवति बलिंच भुंगते, काकोपि जीवति चिराय बलिंच भुंगते। अपने पेट भरकर तो काग भी जीता है। लोग जो भोजन करते हैं उसमें से दो चार दाने जो गिरे हुए होते हैं उन्हीं को चूंग चांग कर कौवा भी अपना जीवन जीता है। कुत्ते भी जीते हैं कबल खाकर, लेकिन कौवे को न आश्रम बनाना है न मकान बनाना है। कुत्ते को न मकान बनाना है न आश्रम बनाना है, केवल पेट भरना है। इसलिए दौड़ता है, पेट भर लेता है, दिन भर सोता है, रात भर सोता है। महाराज, एक तो पेट भरने की समस्या है, दूसरी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा आश्रम बन गए। वो आश्रम को कैसे बनाओगे भाई? है आश्रम बनाना है, आश्रम चलाना है, तब क्या हुआ? वित्ताशया है, वित्ताशया। तुम्हारे आत्मानंद स्वामी बंबई केवल तुमको वेदांत सुनाने आता है? तुम लोग क्या समझ रहे हो बोलो? स्वामी आत्मानंद गिरी काठमांडू से, नेपाल से केवल हमको वेदांत सुनाने आते हैं, यही समझ रहे हो? हैं? अरे भाई, वेदांत सुनाने के बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा देना बंद करो तो नहीं आएगा आत्मानंद। सच्ची बात कह रहा हूं। आत्मानंद क्या? कोई भी आनंद नहीं आएगा। हाँ। बोले महाराज, आपको पैसा क्यों चाहिए? सुबह शाम दाल भात खाने की व्यवस्था हम मिला देते हैं। बोले तुम्हारी दाल भात तो हम वही हरिद्वार बैठ के भी खा लेंगे, वहां हजार अन्न छत्र खुले हुए हैं, कहीं भी खड़े होकर दाल भात खाकर पेट भर लेंगे। है? बोले हमको वेदांत तो सुनाने आओ ना। तुमको वेदांत तो सुनाने के लिए तो वहीं आओ ना, तुमको सुनना हो तो वहीं आओ। नहीं महाराज, हमको फुर्सत नहीं है वहां आने का। बोले फुर्सत नहीं है तो मर, खाली वेदांत तो सुनाने के लिए क्यों आएंगे? बोले नहीं महाराज, वेदांत की बात नहीं, वेदांत तो भी सुना दीजिए, आश्रम चलाने के लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा दिया करेंगे भाई।

एक मठ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है और थोड़ा बड़ा होगा तो जो महात्मा जितना बड़ा उसके मठ उतने ही बड़े हैं, जो महात्मा जितना प्रसिद्ध उसके मठ उतने ही व्यापक। ले जी, अब वो सबको चलाना है कि नहीं बोलो। उधर का आश्रम वाला कोठारी कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। उधर का आश्रम वाला कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। अच्छा भाई, हम बंबई कथा करने जा रहे हैं, वहां से जब लौट के आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। ले जी, शंकराचार्य जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं। उनके साथ भी हजार शिष्य पीछे पीछे चलते थे, तो समस्या तो उनके साथ भी थी, मंडली चलती थी। नित्यम सोधर पूरणाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया, कुछ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगा, खाने को मिलेगा। व्यर्थम पर्यटनम करोमि भवतः, ये विश्वास न सन्यासी को है न गृहस्थों को है, और इसलिए वो व्यर्थम पर्यटनम करोमि, भटक रहा हूं। महाराज भर्तृहरि ने एक कुत्ते को लक्ष्य करके कहा, एक कुत्ता तो सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, शांति से बैठता नहीं है, क्या दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती है? माधव माधव विनैव धावन, तुम्हारे दौड़ने मात्र से लक्ष्मी नहीं मिलती। यदि दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती तो कुत्ता सबसे ज्यादा धनी होता। लक्ष्य किया, ए संसार के मनुष्य हो, तुम रात दिन दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? लक्ष्मी के लिए दौड़ रहे हो, लक्ष्मी मिलेगी इसके लिए दौड़ रहे हो, और दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी किसके पास होती? आज कुत्ते के पास होती, अमेरिका के कुत्ते के पास तो होती है, वो इंडिया के कुत्तों के पास नहीं। वहां का नियम क्या है पता है? अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बिल नहीं करते, कहते बच्चे तो कमा लेंगे खा लेंगे, फिर अपनी प्रॉपर्टी किसको बिल करते हैं मरने से पहले? घर में पाले हुए कुत्ते, मैं मर जाऊंगा तो ये कुत्ता कमा के खा तो सकता नहीं है, इसलिए इनको कौन पालेगा फिर? तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देता हूं, जब तक ये बचेगा ये प्रॉपर्टी से इसका गुजारा चलेगा, कुत्ते के नाम पर बिल कर दिया और मर गए। लेव जी, और वो कुत्ते दौड़ते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, और बिल मिल गया, पैसा मिल गया उनको, और हमारे यहां के कुत्ते दौड़ते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है बेचारा, टुकड़ा भी नहीं मिलता है। नित्यम सोधर पूरणाय सकलाट उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थम पर्यटनम करोमि, बिना मतलब दौड़ता रहता हूं मैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। भवतः सेवाम न जाने विभो, आपकी कृपा हो जाए तो कहीं दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, ये मेरी बुद्धि में आई नहीं, ये मेरी मूर्खता थी, अपनी मूर्खता से मैं दौड़ रहा हूं। जबकि आप एकमात्र आपकी कोई सेवा करे, उस आपके शरण में आपके आश्रय में रहने वाले को न उधर पूरण के लिए दौड़ना जरूरत है,

0: न वित्त के लिए दौड़ने की जरूरत है। आपकी कृपा हो जाए तो सर्वस्व उसको प्राप्त हो सकता है। वरिवसी तत्चरण योर, आपकी चरण की पूजा सेवा करने वाले बाणासुर को यदृद्धिम सूत्राम्रो परम उच्चैरपि सति। सूत्राम्ण माने इंद्र का साम्राज्य, हालांकि सबसे उच्च साम्राज्य था, लेकिन आपकी पूजा करने वाला बाणासुर को तो इंद्र के साम्राज्य को भी तुच्छ करने वाला साम्राज्य आपकी कृपा से प्राप्त हो गई। अधश्चक्रेमाण, क्योंकि इंद्र के जो साम्राज्य वो केवल स्वर्ग की साम्राज्य है, आपके कृपा से जो साम्राज्य बाणासुर ने प्राप्त की वो तो तीनों लोक का साम्राज्य प्राप्त किया, पाताल का भी, मर्त्य लोक का भी, है ना। और आपकी कृपा से बाणासुर ने तो स्वर्ग को भी जीता, मर्त्य लोक को भी जीता, पाताल को भी जीता। तो स्वर्ग का साम्राज्य तुच्छ हुआ कि नहीं, ये कैसे संभव हुआ। वरी वसी तरी त्वचरण योर, बाणासुर ने और कहीं कहीं इधर उधर भटका नहीं बाणासुर, केवल आपके चरण का आश्रय लिया था, वो आपके चरण को छोड़कर कहीं गया नहीं। बाणासुर की शिव भक्ति तो आप लोगों ने सुना ही है। उसका नियम था, प्रतिदिन पार्थिवेश्वर का निर्माण करता था और पूजा करता था, विसर्जन करता था। उसने कहीं पुराण में पढ़ ली कि 125,000 शिवलिंग बनाकर पार्थिवेश्वर की पूजा करेगा तो उसको सारा साम्राज्य प्राप्त होगा। तो उसके मन में इच्छा हो गई कि वह सेवा भी मैं करूं, लेकिन हाथ तो दो है, कैसे करूं। फिर भी जैसे भी उसने अपना समय निकालकर कुछ न कुछ पार्थिवेश्वर निर्माण करता था, प्रतिदिन मिट्टी लाता था, शिवलिंग निर्माण करता था। उस शिवलिंग में आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत 16 उपचार पूजा करता था, फिर सायंकाल आरती करके नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुम्हारी इस आराधना, इस पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो। बोले महाराज अभी तो 125,000 शिवलिंग बनाता हूं, पूजा करता हूं इन दो हाथों से, मेरी इच्छा है करोड़ करोड़ शिवलिंग की अर्चना करूं, लेकिन ये दो हाथ कम हो गए, आप मुझे ज्यादा हाथ दोगे तो उन हाथों से मैं ज्यादा शिवलिंग बनाकर ज्यादा पूजा कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो बाणासुर ने, तो भगवान ने कहा कि जब मेरी ही पूजा करनी है तो तुझे हाथ देने में क्या कंजूसाई करनी है, तथास्तु कह देना है मुझे, है चेक काट कर तो देना था नहीं, तथास्तु। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया तो बाणासुर के 1,000 हाथ हो गए। अब तो बाणासुर बड़ा खुश हो गया, 1,000 हाथ से वो रोज 125,000 शिवलिंग का निर्माण करता था मिट्टी से रोज, और उसकी 16 उपचार पूजा करता था, और सायंकाल आरती करने के बाद विसर्जन करता था नर्मदा में ले जाकर। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, मिट्टी खोद कर लाता था, शिवलिंग बनाता था, और आवाहन से लेकर 16 उपचार पूजा करता था। तो शाम के समय में प्रदोष पूजा करने के बाद फिर नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। वाह क्या कहना भाई। और बाणासुर ने जिन शिवलिंगों का निर्माण करके नर्मदा में विसर्जन किया, आज भी वो नर्मदेश्वर बाणलिंग कहलाते हैं। सीधे नर्मदा से उठाकर पत्थर शिवलिंग लाओ, घर में पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं। क्योंकि षोडशोपचार पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा बाणासुर ने कर चुका है, वही शिवलिंग आज भी मिलते हैं नर्मदा में, इसलिए बाणलिंग बोलते हैं उनको। शिवलिंग नर्मदा का शिवलिंग बाणलिंग की पूजा सबको करनी चाहिए। स्त्री शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज सबको करनी चाहिए, शास्त्र में इसका वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चान्ने च संकर आहा, वर्ण संकर भी कर सकता है। मत भक्ति भावना पूता यान्ति मत परमं पदम, म्लेच्छोपि या यदि मत भक्ति भक्ति समन्विता न तत् समच चतुर्वेदी नाग्निष्टोमादि कृत्नर। यस्तु पूजयते लिंगम माम जपत माम जगतपतिम, यदि माम जगतपतिम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा मत्परायणा तस्य प्रीत प्रसादस्याम सुभान लोकान अनुत्तमा। ये पूजा का बहुत महत्व है, शिव पूजन की बड़ी महिमा है। शिव गीता में, सूर्य पुराण में, विष्णु पुराण में शिव पूजन का बहुत महिमा है। बाणासुर ने पूजा की, उससे प्रसन्न होकर शिव साक्षात आ गए, प्रकट हो गए, कहा कि बेटा अब क्या इच्छा है बोलो। बोले महाराज मेरी अब इच्छा है आप मेरे घर में विराजमान हो, कैलाश छोड़ दो, मेरे घर में रहिए, और इन 1000 हाथों से मैं आपकी सेवा करूं प्रत्यक्ष, बोलो। बोले मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरी पत्नी है पार्वती, उसको क्या करूंगे। बोले उसको भी ले आइए, तो मेरी सेवा तो तू करेगा, पार्वती की सेवा कौन करेगा। बोले महाराज मेरी बेटी उषा है ना, वो करेगी, हम दोनों बाप बेटी मिलकर आप और अपनी पार्वती की सेवा किया करेंगे। बोले चल तू सेवा करता है तो हमको क्या हर्ज है, भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, तू घर में ही खिला देगा, कोई हर्ज नहीं है। भगवान शिव बाणासुर के ही रहने लग गए। तो शाम के समय खा पीकर शिवजी सोए हुए थे, 1000 हाथ से शिवजी के पांव दबा रहा था कौन, कितना बड़ा शरीर होगा शिवजी का भाई, ने? 1000 हाथ से भगवान शिव के पांव दबा रहा था। एक दिन दबाते दबाते कहने लगा उसने, महाराज आपकी कृपा से 1000 हाथ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि इन 1000 हाथ में कितनी ताकत है, वो नापने का थर्मामीटर नहीं मिल रहा है। बोले क्यों, क्योंकि कोई भी मैं जिससे लड़ना चाहता हूं, मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मेरा नाम सुनते ही सब डर के मारे सरेंडर हो जाते हैं, कोई लड़ना सामने खड़ा ही नहीं होता है। तो आज तक कोई मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा कोई मेरे से लड़ता हिम्मत करता तो मुझे पता चलता कि 1000 हाथ में कितनी ताकत है। आज तक ये जांचने का मौका ही नहीं मिला महाराज कितनी ताकत है। मेरी इच्छा है, और कोई नहीं मिलता तो नहीं सही, आपसे ही दो दो हाथ किया जाए, पता तो चले कि हाथ में भुजदंड में कितनी ताकत है। भगवान लेटे लेटे मुस्कुराए, अच्छा बेटा तुम्हारी यही इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तथास्तु। बोले कब महाराज, कब लड़ाई होगी, कब लड़ेंगे हम। बोले मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, हाँ तुम्हारी इच्छा पूरा करने वाला एक और है, वो पूरा कर देगा। कौन? बोले वो द्वारिका में रहता है, हाँ वो पूरा कर देगा तुम्हारी इच्छा। कब महाराज? बोले जब तुम्हारा ये ध्वजा गिरेगा तब वो आएगा, ये समझ लो। अब बाणासुर रोज सुबह उठता था, बाहर जाके छत में अपना ध्वजा देखता था कि गिरा कि नहीं, वो समय आया कि नहीं है। तो एक दिन तो उषा ने स्वप्न देख लिया, अनिरुद्ध के साथ उसका प्रेम हुआ। अब उषा ने कह दिया कि मेरा ऐसा हुआ है, तो चित्रलेखा ने कह दिया कि कौन है बताओ। बोले मैं जानती तो समस्या न होती, स्वप्न में हुआ है। चलो स्वप्न में ही सही, जो भी होगा तीनों लोक में उसको मैं लाकर तुमको खड़ा कर दूंगा तुम्हारे सामने। मैं योगिनी हूं, योग शक्ति है मेरे पास। हां चित्र बनाया, पहले तो स्वर्ग के देवताओं के, इंद्र आदि के, जयंत आदि का फोटो बनाया। ये था तुम्हारे स्वप्न में आने वाला? बोले नहीं, ये था नहीं। फिर प्रसिद्ध जो राजा रजौड़े थे, राजकुमारों थे, उनका चित्र बनाया। ये था? नहीं। ये था? नहीं। तो चित्रलेखा ने विचार किया कि शायद द्वारिकावासी कोई आया होगा, तो कृष्ण का फोटो बनाया। ये था? बोले नहीं। कभी कभी कृष्ण भी जाता था काला। आप लोगों के आया कि नहीं, रात्रि स्वप्न में आया कि नहीं आप लोगों के पास? नहीं आया? चलो आजकल ईमानदार हो गया वो, नहीं तो हैरान करता था वो। तो बोले ये था? बोले नहीं। तब प्रद्युम्न का फोटो बनाया, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। बोले मिलता मिलता तो है लेकिन नहीं, पक्का तो नहीं है, लेकिन नाक भी उसे मिलता जुलता है, कान आंख गाल, लेकिन पक्का वो नहीं है। बोले हां अब स्रोत मिल गया। तब अनिरुद्ध का फोटो बनाया दिखाया, तो बस लज्जित हो गई उषा, यही था। कौन है, कहां रहता है, मुझे तो यही चाहिए बस। उषा ने जिद कर दी, तो बोले चिंतानगर में उसको ला देती हूं। चित्रलेखा गई आकाश मार्ग से सोनितपुर से सीधा द्वारिका। सोनितपुर माने तेजपुर, आसाम में है। सीधे द्वारिका पहुंच गई। रात के समय में सोए हुए थे अनिरुद्ध, चारपाई के सहित उठाकर लाई, ले तू अपनी इच्छा पूरा कर, बस अब खुश है? बोले अब खुश हूं। अब उदा सुबह देखे तो द्वारिका में अनिरुद्ध गायब है ही नहीं, कहां गया, क्या हुआ? पता लगाया, कृष्ण ने कहा कि पता लगाओ। नारद जी पहुंच गए, नारायण, ए नारद जी क्या हुआ? मेरा बेटा क्रिंडम हो गया, पोता, बेटा नहीं, अपहरण हो गया। कहां गया? ओहो। बोले क्या हुआ? अच्छा, अरे मैंने उसको तो वहां देखा था भाई। कहां देखा था? तेजपुर, सोनितपुर, बाणासुर की राजधानी में। अरे उसकी ये हिम्मत हो गई, कैसे गया, क्या हुआ? नारद जी ने सब इतिवृत्ति सुना दी। तो बोले उसके लड़के हम झगड़ा करके भी, युद्ध करके भी उसको ले आएंगे, लेकिन ये चौमासा हो गया, अब क्या करें? चौमासा पूरा होने दो तब जाएंगे। जहां चौमासा समाप्त तो हुआ कि उसका छत का जो है ध्वजा गिर गया, तो भगवान श्री कृष्ण इधर से चौमासा पूरा होते ही सेना दल बल के सहित तेजपुर में आक्रमण किया, युद्ध हो गया बाणासुर के साथ भयंकर। लड़ते लड़ते उधर शिवजी, इधर कृष्ण, नारायणी सेना और शिवसेना, महाराष्ट्र की नहीं दोनों लड़ रहे, शिव और कृष्ण दोनों लड़ रहे हैं। अंत में कृष्ण ने कहा कि हे भोले बाबा, कुछ तो मान रखो, ये युद्ध आपकी और मेरी प्रतिष्ठा का विषय हो गया है, मुझे तो इसको मारना तो था नहीं, सहमति कर लेते हैं, भगवान शिव ने कहा कि मेरा चेला है, उसके पक्ष में लड़ना मेरा फर्ज है, मुझे वह सुबह शाम दाल भात रोटी खिलाता है, अपने 1000 हाथों से वो सेवा करता है, तो उसके साथ मुझे लड़ना है, क्या करें? बोले नहीं नहीं ऐसा करो, हम उसको मारेंगे नहीं। हाँ, तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करो, बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते, मुझे थोड़ा सोने की इच्छा है। कृष्ण को कहा जृम्भणास्त्र छोड़ दो, उससे मैं सो जाऊंगा, और जब तक मैं सोऊंगा तब तक तुम इससे लड़ते रहना। तो कृष्ण ने जृम्भणास्त्र छोड़ा, शिव जी सो गए। तो शिव जी सो गए तो बाणासुर की क्या हिम्मत थी कृष्ण से लड़ने की? एक एक हाथ काटते गिराते किया, जब दो हाथ बचे हैं, तब शिव जी ने आंख खोली और जमुहाई लेते हुए हा करते हो, कभी कभी आप लोग करते हो ना कथा सुनते सुनते, इसी तरह जमुहाई लेते हुए भगवान शिव उठे, बस कृष्ण हो गया।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस, 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री धर्मानंद जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: पुनः इसी सोमास्कंद को भगवान विष्णु से इंद्र ने प्राप्त किया, और इंद्र को प्रसन्न करके मुचुकुंद ने प्राप्त करके दक्षिण भारत में इसकी स्थापना किया। मुचुकुंद के विषय में भी शिवभक्त चरित्र में एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर कैलाश से नीचे भ्रमण करते हुए नंदन वन में आए। नंदन वन में आने के बाद भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बैठ करके पार्वती को अनेक प्रकार से आत्मज्ञान की कथा सुनाने लगे, भगवत चर्चा शुरू कर दिया। जब भगवत चर्चा कर रहे थे, संयोग से काला मुख का वानर आया, और वानर आकर के पेड़ों पीधा उधर घूमने लगा, और बाजू में बिल वृक्ष के पेड़ थे। जब बंदर इधर उधर घूमता तो उसके पैरों के चोट से कुछ हाथ से बिल पत्ते नीचे गिर के गिरते जाते। भगवान शंकर जब तक आत्मज्ञान उमा को सुना रहे थे, तब तक लगभग 1008 बिल पत्र गिरते रहे। भगवान शंकर ने कहा, देखो भवानी, 1008 बिल पत्र इस वानर के अनजाने से पत्ते गिरे हैं, और सौभाग्य से आज प्रदोष है। प्रदोष बोलते हैं प्रत्येक पक्ष के त्रयोदशी जो तिथि होती है, द्वादशी से विद्या होती है, उसका नाम प्रदोष है। प्रदोष काल था। भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उस बानर को संकेत से बुलाया, उसे वरदान दिया कि जा तू धरती पर 1008 वर्ष तक राज्य करेगा। इस वरदान को सुनने के बाद वह बानर रोने लगा कि शास्त्रों में बतलाया है कि आपका दर्शन होने के बाद मोक्ष मिलता है, और आप मुझे राज्य प्रदान कर रहे हैं। राज्य में अनेक प्रकार के बंधन हैं, आसक्ति होती है, कामना वासनाएं हैं। जैसे अग्नि में हम जितना घी डालते हैं उतनी लपटें बढ़ती जाती है, अग्नि शांत नहीं होती है, ऐसे राज्य के भोगने से और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, यह तो हम सभी लोगों की आत्मानुभूति है। बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, न जाने कितने भोगों को हमने भोग लिया, फिर भी आंखें भी अतृप्त है, कान भी अतृप्त, जीभ भी अतृप्त। यदि आंख एक बार सौंदर्य युक्त पदार्थ को देख लेती, पकड़ लेती, तो बार बार जो है ललचाई हुई आंखों से फिर हम बाजार के दृश्य को नहीं देखते, क्योंकि हमारी आंखें तृप्त नहीं हुई, इसे नए नए रूपों को देखना चाहते हैं। ऐसे जीव यदि एक बार तृप्त हो जाती तो फिर नए नए पकवानों के मिष्ठानों की इच्छा नहीं करती, पर यह भी तृप्त नहीं हुई। और कान भी ऐसा ही है, कान भी नए नए मनोरंजन कारक बातों को सुनने के लिए लालायित रहता है। तो संसार के विषय ऐसे हैं, जितना विषय का सेवन किया जाए उतने ही ये जो है विषयों की लपटें बढ़ती जाती हैं, और ये लपटें जो है हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देती है। इसीलिए उपनिषद में जहां पर अन्न शब्द का प्रसंग आता है वहां पर दो व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने किया है, अतीति अन्नम और आद्यते भोज्यते इति अन्नम, एक ही शब्द है, दो अर्थ निकाला है। हमारे यहां व्याकरण दर्शन की महिमा है व्युत्पत्ति वैचित्र्यार्थ अर्थ वैचित्र्यम, एक ही शब्द है, जैसी व्युत्पत्ति करेंगे वैसा विलक्षण अर्थ निकल आता है। अतीति अन्नम का अर्थ है जो पूरे संसार को भक्षण करता उसका नाम अन्न है, दूसरा है कि जो खाया जाए उसका नाम अन्न है, पर वास्तव में देखा जाए तो अतीत अन्न में जो है सटीक बैठता है। अन्न हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देता है, हम जो है शमशान में जलकर राख हो जाते हैं, परंतु वह जस का तस बना रहता। तो उस बंदर ने कहा कि भगवान ये जो आपने राज्य का वरदान दिया इससे मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि तू हमारी आज्ञा मान और तुझे बहुत जल्दी मोक्ष मिलेगा, तो जो है हमारे भक्तों से प्रीति करना, भगवान विष्णु की उपासना करना, भगवान विष्णु की उपासना से तुझे सोमास्कंद नामक लिंग की प्राप्ति होगी, उसके बाद तू मुझे मरने के बाद सयुज्य मोक्ष को प्राप्त करेगा। वही जो बानर था मरने के बाद मुचकुंद बना, मुचकुंद बनने के बाद जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इंद्र के हाथ से सोमास्कंद प्राप्त किया। जब इंद्र से मुचकुंद की मैत्री हुई, मैत्री होने के बाद इंद्र ने कई बार मुचकुंद से सहायता ली। खैर आजकल तो ऐसा सुनने में नहीं आता है, पर प्राचीन हम पुराणों का अवलोकन करते हैं उसमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिस प्रसंग में इस धरती के बड़े बड़े पराक्रमी राजा महाराजा स्वर्ग लोक जाकर देवताओं की सहायता करते थे, उसमें से मुचकुंद भी बहुत मशहूर हो गए हैं। जब मुचकुंद देवासुर संग्राम करते करते थक गए तो थकान मिटाने के लिए उन्होंने सुखपूर्वक शयन की निद्रा मांगी। यह तो प्रसिद्ध है, भागवत में भी कथा मिलती है, परंतु शिव चरित्र में कुछ विलक्षण एक कथा मिलती है। यही मुचकुंद जब देवासुर संग्राम में दैत्यों को हरा दिए उस समय इंद्र इनका बड़ा सम्मान करते थे, और इंद्र ने कहा कि तुम अपना जो सबसे अभीष्ट प्रिय हो वह मुझसे मांग लो, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी तुम्हारे लिए अधेय नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुचकुंद ने कहा कि आप मुझे अपना सोमास्कंद शिवलिंग प्रदान कर दीजिए। इंद्र बहुत चिंतित हो गए, इस सोमास्कंद को मैं कैसे दे दूं। इंद्र ने बात को घुमा दिया, इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु ने मुझे यह सोमास्कंद नामक शिवलिंग दिया है, यह उनकी धरोहर है, यह यदि तुम्हें चाहिए तो तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करो। मुचकुंद भगवान विष्णु की उपासना में लग गए। बारह वर्ष के बाद जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे सोमास्कंद लिंग जो आपने इंद्र को प्रदान किया वही मुझे चाहिए। भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया। जब भगवान विष्णु की अनुमति मिल गई, अनुमति मिलने के बाद इंद्र के पास आते हैं और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने अनुमति प्रदान कर दिया है, अब आप मुझे सोमास्कंद लिंग प्रदान कीजिए। इंद्र ने कहा कि कल प्रातः काल ले जाना, इधर जो है रातों रात विश्वकर्मा को बुला करके कहा कि तुम ऐसा सोमास्कंद बनाओ कि राजा को पहचान न हो असली नकली का। देखो इंद्र बहुत चतुर राजा माने जाते हैं, और ऐसा कृत्रिम सोमास्कंद लिंग बनाया कि राजा पहचान न पाए कि असली किया नकली किया, और उस नकली सोमास्कंद लिंग को प्रदान कर दिया। जब नकली सोमास्कंद लिंग को लेकर के धरती पर आए, दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित करके पूजा करने लगे, उन्हें सपने भगवान शंकर ने बतलाया कि इंद्र ने तुम्हें धोखा दिया है, यह जो है विश्वकर्मा से निर्मित नकली सोमास्कंद लिंग है। पुनः दोबारा गए, बोले कि इंद्र तुमने मेरे साथ छल किया है और यह तो नकली सोमास्कंद लिंग है, मुझे असली दो। इंद्र ने कहा कि ठीक है, कल पुनः ले आना। इस तरह से छह बार ठगा है इंद्र ने मुचकुंद को। सातवें बार मुचकुंद को बड़ा क्रोध आया है, बोले कि देखो तुम बार बार मुझे नकली शिवलिंग देते हो और भगवान शंकर की प्रेरणा से मैं मांगता हूं, और अब की बार धोखा दोगे तो हमारा तुम्हारा हमेशा के लिए बैर हो जाएगा, झगड़ा होगा, युद्ध होगा। तब जाकर के इंद्र सातवीं बार अपने प्रिय सोमास्कंद लिंग को मुचकुंद को प्रदान करते हैं। इंद्र को बहुत दुख हुआ, पर अब करते भी क्या, और पूजा का जो नियम था नियम बतलाया कि प्रातः काल उठ करके षोडशोपचार से पूजा करना। षोडशोपचार का अर्थ होता है कि पाद्योपाद्यम हस्त्यवर्ग्यम मुख्याचमनीयम जितने हैं, स्नान है, माला है, नैवेद्य आरती पर्यंत, ये जो पूजा कहलाती है, इस तरह से पूजा करना। और इस सोमास्कंद के महिमा को बतलाया, वही सोमास्कंद लिंग जिसको कि पहले भगवान विष्णु ने प्राप्त किया, विष्णु से इंद्र ने, इंद्र केवा मुचकुंद ने, तो वही राजर्षि मुचकुंद ने दक्षिण भारत कमलालय क्षेत्र में स्थापित किया है, उसकी बहुत ही विशेष महिमा यहां बतलाया है। तो भगवान शंकर के चरण की आराधना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, यह केवल भगवान शंकर के लिए कहा जाता है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि। यह शास्त्र का वचन है कि मनुष्य जैसा भी शुभाशुभ कर्म करता है उसे भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प बीत जाए फिर भी जो अच्छे बुरे किए हुए कर्म उनको भोगना ही पड़ता है। परंतु भगवान शंकर के अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि भावी को प्रारब्ध को मेटने में समर्थ है। इसलिए आज भी आप देखते हैं कि मनुष्य अपने मृत्यु के भय को निवारण करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और इससे बहुत कुछ संभव होता भी है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय जी की जीवनी है, उनकी केवल 8 वर्ष की आयु थी, परंतु उनके पिता श्री मृकंडू ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी 8 वर्ष की आयु है और आज से 5वें दिन तुम्हारी आयु समाप्त हो रही है। केवल 5 दिन की उपासना से ही भगवान शंकर को महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न किया और हमेशा के लिए चिरंजीवी बन गए मार्कंडेय ऋषि। तो भगवान शंकर की उपासना कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, परंतु हमें श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जब मनुष्य उपासना करने चलता है तो एक बड़ी भारी समस्या आती है। समस्या यह आती है योग क्षेम की। वह सोचता है कि यदि मैं उपासना करूं तो हमारा योग क्षेम कैसे चलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुखारविंद से स्पष्ट कहा है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। दुनिया कोई विश्वविद्यालय कोई भी आदमी इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोल सकता है कि तुम पढ़ो लिखो साक्षर हो मैं तुम्हें नौकरी दे ही दूंगा। कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं कर सकता, पर भगवान बिल्कुल ताल ठोंक के कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम, बस खाली तुम चिंतन करो। योग क्षेम का तो वहन मैं खुद करूंगा। नरसिंह मेहता जो गुजरात में बहुत मशहूर हो चुके हैं, भगवान ने उनका सारा योग क्षेम, बहुत लंबी कथा आप सब लोग जानते हैं, कैसे वहन किया। उनके लिए भगवान सेठ बन गए, साहूकार बन गए, न जाने क्या क्या भगवान बन गए। ये कलयुग की घटना है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कथा है सुंदर पांडे की। सुंदर पांड्य पांड्य देश के राजा थे। वे भगवान शंकर के हमेशा उपासना करते थे। एक दिन घूमते हुए वह अपने राज्य से बाहर कहीं चले गए, नदी किनारे घूम रहे थे। कुछ वहां पर जादूगर आए, जादूगरों ने कहा राजन आपको हमारा नमस्कार हो, और आप जिस शिव की कंकड़ पत्थर की उपासना करते हैं वह तो कंकड़ पत्थर न बोल सकता है, जो स्वयं कुछ बोल नहीं सकता ग्रहण नहीं कर सकता तो इस पत्थर की उपासना करने से क्या मिलेगा। आप देखो हमारे जादुई छड़ी में यह बल है कि जो चाहोगे सो हम कर सकते हैं। पांड्य सुंदर पांड्य राजा के सामने उन्होंने कहा कि आपके हाथ में जो ये लिंग है इसको हम चाहें तो सोना बना सकते हैं। राजा ने कहा कि जी तुमने सोना बना दिया तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब बात ही बात में जो है तुरंत उसने मोर पंख से मंत्र पढ़ा और हाथ का शिवलिंग जो है वह सोना बन गया। अब सोना बनते राजा उस जादूगर के चरणों में गिर पड़े, बोले कि तू महान है। और तब से राजा ने भगवान शिव की उपासना छोड़ करके उस नास्तिक मत की दीक्षा ले ली। नास्तिक मतलब शरीर ही आत्मा है, तंत्र मंत्र सब कुछ है, इस कंकड़ पत्थर की पूजा करने से क्या होता है। इधर जो है जिस देश का राजा नास्तिक हो जाए, नास्तिक मत में दीक्षित हो जाए, प्रजा भी वैसी हुई हो जाती है। मंत्री रानी बहुत चिंतित हुए, दुर्भाग्य से चमत्कार के वशीभूत होकर राजा ने शिव भक्ति छोड़ दिया है, अब हमें कुछ उपाय करना चाहिए। परंतु राजा के सामने कौन बोले, पूरे राज्य में जो है नास्तिकों का बोलबाला हो गया। सर्वत्र जो है यह प्रसिद्धि हो गई कि शून्य ही आत्मा है, शरीर ही आत्मा है, इससे भिन्न आत्मा नामक कोई चीज नहीं है। मंत्री ईरानी की सम्मति से उस जमाने के बहुत मशहूर दक्षिण भारत में ज्ञान स्वामी थे, ये भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। उस ज्ञान स्वामी के पास मंत्री जाते हैं और जाकर अपने राजा की अवस्था का वर्णन करते हैं कि हमारे राजा भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे, परंतु नास्तिकों के चमत्कार से प्रभावित होकर वे नास्तिक मत को स्वीकार कर चुके हैं। चमत्कार का मतलब होता है कार्य कारण भाव। जो चीज सामान्य ज्ञान से समझ में न आए परंतु कार्य कारण भाव से परिवर्तन, उसका नाम है चमत्कार। तो चमत्कार से प्रभावित होकर उन्होंने शिव पूजा छोड़ दिया है। जब इस प्रकार से कहा तो ज्ञान स्वामी पांड्य देश के नगर में प्रवेश करते हैं, उनको एक बगीचे मंत्री ने ठहरा दिया और ठहराने के बाद सारा समाचार बता दिया। उधर जो है जब नास्तिकों ने सुना, कोई भगवान शंकर का भक्त जिसका नाम सुंदर स्वामी है वो प्रधारा है और वह जो है राजा से परामर्श करने वाला है, बहुत चिंतित हुए। चिंतित होकर के मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया, ऐसा मारण मंत्र का प्रयोग किया कि अग्नि जलती हुई सुंदर स्वामी के पास आई और उनके कुटिया को जलाने लगी। सुंदर स्वामी ने भगवान शंकर के 10 श्लोकों में प्रार्थना किया, तमिल भाषा में प्रार्थना किया। इसके बाद भगवान शंकर ने दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद अग्नि शांत हो गई। अग्नि देव ने कहा कि मैं तो शांत हो गया परंतु आप मुझे स्थान बताइए, मैं कहां रहूं। सुंदर स्वामी ने कहा कि तुम्हें जिसने भेजा तुम उसी के पास जाओ, ये देश का राजा सुंदर पांडे तुम उसके पास जाओ, वही तुझे शरण देगा। वही अग्नि पुनः वापस पांड्य देश के राजा के पास आई और सुंदर पांडे को जलाने लगी। बेचारा जो है मूर्छित पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, झाड़ फूक किए, वह ठीक ही न हो, परेशान। सारी नब्ज देखी, बोले कोई बीमारी नहीं इनको है, बस शाम तक हम लोग ठीक कर देंगे अपने तंत्र मंत्र से, पर कोई फायदा न हुआ। अंत में उसमें से एक नास्तिक ने कहा कि इस राज्य में लगता है कोई सही भक्त आ गया है, उसी के प्रभाव से ये जो है राजा का ज्वर बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है, उसको देश से निकाला जाए। मंत्री ने कहा तुम तो झाड़ फूक करके थक गए, तुम्हारी दवाई भी सारी समाप्त हो गई, कोई नहीं काम किया, और उल्टे तुम बोले कि शिव भक्त को देश से निकालो तब शांत होगा। जब शिव भक्त को बुलाया गया, अच्छे आसन पर बैठाया, बैठते जैसे उन्होंने भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का प्रयोग किया, तत्काल ज्वर शांत हो गया। राजा उठकर बैठ गए। राजा ने कहा कि किसने मेरा संताप मिटाया है। मंत्री ने कहा कि शिव भक्त है, इनके मंत्र से आपका ज्वर शांत हुआ है। राजा ने कहा ये नास्तिक लोग जो इतना बोल रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं ठीक किया। ये बोले कि राजन इस समय दैव गति विपरीत चल रही है, इसलिए आप हम पर नाराज न होइए और आप हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि कौन मत श्रेष्ठ है कौन मत श्रेष्ठ नहीं है, इसका नियामक तो शास्त्रार्थ है। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया, बहुत दिन तक शास्त्रार्थ चलता रहा, परंतु शास्त्रार्थ में किसी का मत निर्णित नहीं हो पाया। तो राजा ने अंत में कहा कि मैं एक कागज लिखकर अग्नि में डालता हूं और जिसके मत का कागज जल जाए वह समझो कि हारा गया। राजा ने एक उनके मत सिद्धांत के अनुसार पत्र लिखवाया, दूसरा शिव भक्तों के द्वारा। जैसे ही उसकी उनके कागज को अग्नि में डाला, तुरंत जलकर राख हो गया। जब सुंदर स्वामी के पत्र को डाला तो बिल्कुल वैसे पत्र जस का तस रहा, नहीं जला। नास्तिकों ने कहा ये राज्यसभा है, राज्यसभा में हो सकता कोई दोष हो और आपके दोष से ये अग्नि जो है ना हमारे कागज को जला डाली, इसलिए हम इसको प्रमाणिक नहीं मानते, स्वीकार कर दिया। राजा ने कहा कि जब आप इतने बड़े प्रमाण को स्वीकार नहीं कर सकते हो तब तुम लोग ही बताओ कि ये मैं कौन सा प्रमाण पेश करूं। नास्तिक ने कहा कि राज से बाहर चलिए और बेगवती नदी में अपने अपने सिद्धांत के कागज को डाला जाए, जिसका कागज नदी के उल्टी दिशा में प्रवाहित हो वह मत श्रेष्ठ, और जिसका कागज डूब जाए वह मत कनिष्ठ। पर राजा ने कहा क्या पता तुम लोग इसमें बेईमानी कर डालो, इसलिए पक्की शर्त होनी चाहिए। शर्त यह है कि जो पराजित होगा उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे। जब ऐसा शर्त रखा, शर्त रखकर दोनों कागज मंगाया दोनों के सिद्धांतों का, जैसे नास्तिकों के कागज को डाला वह तो जल में डूब गया, मछलियों ने खा लिया। जैसे सुंदर स्वामी के ओम नमः शिवाय मंत्रों से लिखित सिद्धांत को डाला वह कागज जो है नदी की धारा के विपरीत चलने लगा। सारे नास्तिक पराजित हुए, उनको राजा ने सूली पर चढ़वाया और कुछ तो डर के मारे राज्य को छोड़कर भग गए। तो सुंदर स्वामी भगवान शंकर के चरणों की उपासना से, ये कलयुग की कहानी बहुत पुरानी नहीं है, दक्षिण भारत में ये कमलालय क्षेत्र की प्रसिद्ध, ये तमिल भाषा में ये तो अंकित है, हिंदी में नहीं है, शिवभक्त चरित्र में इस संकेत में लिखा हुआ मिलता है। तो भगवान शंकर की उपासना से जो भावी है, प्रारब्ध है, जो अवश्य हमें भोगना ही पड़ता है, वह भी मिट सकता है, बशर्ते हम जो है ना उसको साक्षात चेतन मानकर उपासना करें। और कलयुग में भगवान जो साक्षात चैतन्य है, वही चैतन्य भक्तों के उद्धार के लिए पाषाण खंड में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि सतयुग में त्रेता में तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव में विश्वास था, पर कलयुग के कारण से हमारी बुद्धि ऐसी जड़ बुद्धि हो गई कि हम उस चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है माता पिता गुरु, उनको तो हम शिव पार्वती समझ नहीं सकते। तो भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए पाषाण खंड में प्रवेश हो जाता हूं। तो उस चैतन्य की महिमा है, यदि हम उसमें श्रद्धा पूर्वक उपासना करें तो निश्चित ही वहां से उसी चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। शेष विचार कल करेंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।

0: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra, presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Tattva Jigyasa Sajjanu, Vaidik Dasha Shanti Path का विचार करते हुए हम लोग क्रम से तृतीय शांति पाठ का विचार कर रहे हैं। जिसमें जो श्रद्धालु है और प्रज्ञा मंदता से ग्रस्त है, तो श्रद्धालु होते हुए भी वेदाध्ययन में वो अशक्त हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय, वेदांत का जो स्वाध्याय है, उनका फल उनको नहीं मिल पाता है। इसलिए उस फल की सिद्धि के लिए प्रज्ञा मंदता दूर हो, इसलिए ये शांति पाठ का जप किया जाता है। इसलिए जप के प्रतिनिधि रूप मंत्र को इसमें बताया गया है, और आपको जैसे कि बताया कि ये यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में ये मंत्र पठित है, जिसमें हम लोगों ने कल विचार किया प्रथम वाक्य का, जो वाक्य का स्वरूप है अहम वृक्षस्य रेरिवा, इतने का। इसमें ये भावना की गई कि अहम वृक्षस्य रेरिवा, वृक्षस्य अहम रेरिवा श्याम, श्याम ऐसा ऊपर से लगाना है वाक्य की पूर्ति के लिए। मैं इस संसार रूपी वृक्ष का छेदन करने वाला हो जाऊं, ऐसा सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए कि मैं संसार पे वृक्ष को काट सकूं। बताइए, यही तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ना? मनुष्य जीवन का जो चरमोद्देश्य, यही है संसार की निवृत्ति। जैसे कि बताया था, रिश्च्यते उच्छेद्यते इति वृक्षः, जिसका उच्छेदन किया जा सकता है उन्हीं को वृक्ष बोलते हैं। ये संसार भी वृक्ष है। जैसे कि कल बताया था कि भगवान ने इस संसार को वृक्ष कहा है। कठोपनिषद में भी इस संसार को वृक्ष कहा है। और जैसे वृक्ष का उच्छेद संभव है, वैसे ही ये संसार का भी उच्छेद संभव है। भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, इसका छेदन करे किससे करे? जैसे वृक्ष का उच्छेद करने के लिए हमारे पास कुहाड़ी चाहिए, साधन चाहिए, वैसे यहां भी साधन बताया असंग शस्त्र, वैराग्य। क्या चाहिए? वैराग्य चाहिए। और वैराग्य के लिए जैसे कि बताया विवेक चाहिए, और विवेक तभी होगा जब अंतकरण शुद्ध हो। अंतकरण शुद्ध तभी होगा जब हम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। निष्काम कर्म में हमारी प्रवृत्ति तभी हो सकती है कि फल की इच्छा न हो। फल की इच्छा का अभाव भी तभी हो सकता है कि फल के अंदर दोष दर्शन हो, ये जो फल है वो नाशवंत है, तब जाकर के इस कोटे में हम पहुंच सकते हैं। और वैराग्य होगा, शमदमादि षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व और वेदांत का श्रवण होगा, मनन निदिध्यासन पूर्वक श्रवण होगा, उस कोटि में तत्व ज्ञान जैसे ही होगा तो ये जो संसार वृक्ष है उनका सनिदान नाश हो जाएगा। इसलिए आखिर तो इसका उच्छेद तत्व ज्ञान से ही होना है, इसलिए तत्वज्ञानी न उच्छिद्यते इति वृक्षः, ऐसा जो संसार रूपी वृक्ष है उनका मैं रेरीवा हो जाओ, यानी कि छेदता हो जाओ, छेदन करने वाला हो जाओ, छेदन करने का सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाए। और जैसे भाष्य में अर्थ किया प्रेरयिता, यानी कि मैं इनका प्रेरक हो जाओ। जैसे अभी मैं प्रेरिय कोटि में हूं, वैसे ही प्रेरक प्रेरयिता हो जाओ। देखो इस संपूर्ण संसार के अंदर रह करके जो सबको प्रेरित करता है, जो संसार जिसको नहीं जानता, यम पृथिव्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी आदि में रह करके जो पृथ्वी आदि को प्रेरित करता है, पृथ्वी आदि भूत जिसको नहीं जानते हैं, वो आत्मा है। यानी कि उस कोटि का मैं हो जाओ, उस आत्मा में मैं स्थित हो जाओ, अंतर्यामी हो जाओ मैं। अंतर्यामी कौन है? आत्मा है, इसलिए मैं अंतर्यामी हो जाओ, ये अभिप्राय। अब बताए भला ये इस कोटि में पहुंचेंगे तो इससे और कोई लाभ है क्या? इससे श्रेष्ठतम लाभ संसार में और कोई नहीं है। भगवान भाष्यकार ने उपदेश शास्त्र में कहा है ब्रह्म लाभात परो लाभो नास्ति नास्ति न किंचन। संसार में सर्वोत्तम लाभ है तो वो ब्रह्म लाभ है। अभी जिसको ब्रह्म लाभ हो गया, ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त हो गया, उनकी कीर्ति कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए आगे देखो क्या कहते हैं, कीर्ति ही पृष्ठम गिरेरिव, ऐसा कहा कीर्ति ही, कीर्ति जानते हैं कीर्ति किसको कहते हैं? लोग प्रशंसा करे यही तो क्या कहे, जिसे कोई हम कीर्ति मानते हैं, किंतु ये जो कीर्ति है ना, जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, वो कीर्ति स्थायी नहीं है। जब तक आप प्रशंसकों को खिलाओ पिलाओ मौज कराओ, तब तक आपकी प्रशंसा करेंगे, और जैसे ही बंद कर दो तो कहेंगे कि अरे ये तो ऐसे ही कंजूस है, खड्डूस है, ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे। पहले तो बहुत खिलाता था पिलाता था, अब नहीं हो रहा। तो ये कीर्ति है वो पर्वत की चोटी के समान उन्नत भी नहीं है, जलो की कीर्ति है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये तत्व ज्ञान से संसार वृक्ष का छेदन हो जाने पर मेरी जो कीर्ति है वो गिरेह पृष्ठम इव, इसको शब्द को क्रम में लगाएंगे तो ऐसा होगा, कीर्ति ही गिरेह पृष्ठम इव, मेरी जो कीर्ति है वो कीर्ति ख्याति, वो दृष्टांत बताया गया कि गिरेह पृष्ठम इव, गिरी का जो पृष्ठ भाग है, गिरी से अभिप्राय है पर्वत। पर्वत का पृष्ठ भाग किसको कहेंगे, जो एकदम ऊपर की चोटी है, जिससे ऊपर की कोई चोटी नहीं है। तो जैसे वो गिरी का, पहाड़ का, पर्वत का जो उन्नत शिखर हो

उससे संसार में उन्नत और कोई फल नहीं है। देखिए, यदि कर्म का फल है इसको देखो तो कर्म का फल क्या है? स्वर्ग है। तो स्वर्ग जो है वो सबसे उन्नत नहीं है। अरे उन्नत की बात छोड़िए, कर्म का फल जो स्वर्ग है वो स्वर्ग भी उनका भोग से नाश हो जाता है। जैसे जैसे उनका भोग करो तो वो नष्ट होता चला जाता है। शोकाग्नि से वो पिघलता चला जाता है, इसलिए वो स्थायी नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, गीता में कहा, तद्यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते, ऐसा उपनिषद में कहा। नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति इत्यादि भी, ये मुंडक में कहा। तो ये शास्त्र प्रमाण है कि कर्म का जो फल है वो स्वर्ग है, और कर्म का फल स्वर्ग है वो भी शास्त्र से ही पता चलता है। कर्मणा पितृलोक दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि जो श्रुति वाक्य है उससे ये निश्चय होता है कि कर्म का फल है वो स्वर्ग। और साथ साथ में ये भी श्रुतियों में सुना जाता है कि कर्म का फल नाशवंत है, और इससे बढ़कर जो है उपासना का फल है विद्या देवलोक। विद्या यानी उपासना के फल स्वरूप व्यक्ति देवलोक को प्राप्त करता है। तो वो उपासना भी एक तरफ से कर्म ही है, मानसिक कर्म है, इतना ही फर्क। कर्म और उपासना दोनों ही कर्म से ही ग्राह्य है। भगवान भाष्यकार कर्म के तीन भाग करते हैं, काया से होने वाला कर्म, वाणी से होने वाला कर्म और मन से होने वाला कर्म। तो तीनों में से चाहे किसी से भी किया जाए लेकिन वो आखिर है क्या? कर्म ही है। मन से जो हो, जिसमें मन की प्रधानता हो, उनको उपासना कहते हैं, तो वो भी है तो कर्म ही। इसलिए उनका फल भी समाप्त हो जाता है। उसके लिए भी कहा इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते, ये जो है मानव का, ये मनु का जो ये कल्प चल रहा है उस कल्प में वापस नहीं आएगा, किंतु अगले कल्प में तो वो आएगा ही। इसलिए कर्म के फल की कीर्ति, उपासना के फल की कीर्ति इतनी उन्नत नहीं है। कर्म के फल की कीर्ति से उपासना के फल की कीर्ति उत्तम है, और उससे भी जो है ज्ञान से होने वाला जो निर्विशेष भाव है उससे और कोई उन्नत नहीं है। तो जैसे पर्वत का जो शिखर है वो ऐसा शिखर, जैसा सबसे ऊंचा शिखर किसका माना जाता है? एवरेस्ट का ना, एवरेस्ट माना जाता है शायद, जहां तक मैं जानता हूं। तो सबसे वो ऊंचा शिखर है, वैसे ही जो है आत्मज्ञान का फल है वो सर्वोन्नत है, इससे और कोई श्रेष्ठ फल हो नहीं सकता है। साकाष्ठा सा पराम गति, ऐसा कहा है, वही अंतिम काष्ठा है, वही पराम गति, इससे और कोई श्रेष्ठ गति नहीं है। इसलिए कहा कि मेरी जो मोक्ष विषयिणी जो कीर्ति है वो जैसे पर्वत का भाग जैसे उन्नत होता है, वैसे ही जो है ये मेरी कीर्ति

0: व्यक्ति देवलोक से भी और ऊपर की हो जाए, देवलोक में भी वो प्रसरे। अभिप्राय ये जो देव है वो भी मेरे, ये जो पुरुषार्थ है उसका विहनन न करे। तो देखिए, जब तत्वज्ञान कोटि में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो देवता का, देवलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है, देव भी उनके मार्ग में बाधा नहीं कर सकते हैं। वो फिर पुरुषार्थ का विहनन नहीं हो सकता है, कर्म के फल का भी हनन हो सकता है, उपासना के फल का भी हनन हो सकता है, नाश हो सकता है, किंतु ज्ञान के फल का जो है नाश नहीं हो सकता है। देवता भी उनका नाश नहीं कर सकते। और सुना भी है, तस्यः न देवाश्च न अभूत्या इषते इत्यादि श्रुति में कहा। और देव भी, देवता भी ये चाहते हैं कि हम भी इस स्थिति को प्राप्त करे। यमराजा ने नचिकेता की बहुत परीक्षा की, बहुत प्रलोभन दिए, ऐसे ऐसे प्रलोभन दिए और कहा, इमा रामहा सरथा सुतुरिया नहीं दृशा लंभनिया मनुष्य ही। कहा कि मनुष्य ने देखा तो दूर, सुना तक नहीं, ऐसे भोग तुम मेरे से मांग लो, किंतु ये आत्मज्ञान विषयक प्रश्न को तुम छोड़ दो। तो नचिकेता ने कहा कि नहीं, मेरे को इससे अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही नहीं, सब भोगों की निंदा कर दी। सर्वेन्द्रियाणाम जर्यंती तेजह इत्यादि से नचिकेता ने निंदा कर दी और वह दृढ़ संकल्प होकर के कहा कि मेरे को इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, आप दूसरी बात न करें, यही दीजिए। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृता च अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ऐसा जो आत्म तत्व है वो आप मेरे को बताइए। तब जाकर के यमराजा ने बड़ी भारी प्रशंसा की कि नचिकेता, तुम मेरे से भी ज्यादा धैर्यवान हो, क्योंकि मैंने भी ऐसे कर्म किए और कर्म के फल स्वरूप ये याम्य पद को मैंने मांगा और आत्म पद मैंने नहीं मांगा, तू मेरे से भी आगे बढ़ गया। मैं जानता हूं अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने ये याम्य पद मांगा और तुम मेरे से भी बड़ा धैर्यवान हो। तो इससे भी ये साबित हो गया कि देवलोक से देव भाव की जो प्राप्ति है उससे भी आत्म ज्ञान यानी आत्म पद ऐसा है कि वो सर्वोन्नत है, देवता भी इस पद को चाहते हैं। और इसी के लिए कहा गया, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। इसलिए वो सर्वोन्नत है कि उस पद को प्राप्त करने के बाद पुनः इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता है, यानी कि पुनः वो जन्म और मृत्यु का ग्रास नहीं बन सकता है। वो ऐसा पद इससे संसार में और कोई श्रेष्ठ नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति ही कुतो यम अग्नि ही तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य वासा सर्वमिदं विभाति। इसलिए ज्ञान का फल वो उत्तम है। इसी बात को कहते हुए आगे कहते हैं, ऊर्ध्व पवित्र स्वमृतम अस्मि। अब इस कोटि को जो प्राप्त है वो अपने को किस रूप में पाते हैं, तो कहते हैं ऊर्ध्वम पवित्र, ऊर्ध्व हूं मैं और पवित्र हूं। ऊर्ध्वम यानी कि उत्कृष्टम और पवित्रम का अर्थ है शुद्धि। उत्कृष्ट शुद्धि है जिसकी ऐसा मैं हो जाऊं, इस कोटि का मैं हूं और ऐसा हो जाऊं। यदि सिद्ध वचन से लेंगे तो मैं हूं, और साधक कोटि से यदि कहे तो मैं ऐसा हो जाऊं। इनको दोनों में घटाना। देखिए ब्रह्म ऊर्ध्व है। भगवान ने क्या कहा कि इस संसार का जो कारण है वो ऊर्ध्वम है, ऊर्ध्वम मूलः। ऊर्ध्वम का अर्थ है उत्कृष्ट, जिससे कोई उत्कृष्ट न हो। ऊर्ध्वम का अर्थ है ब्रह्म। देखो इस संसार की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्म से, इसलिए ब्रह्म ऊर्ध्वम है। और पवित्र भी है वो, जिनके स्पर्श मात्र से सब पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। गीता में जैसे कहा, नहीं ज्ञानीन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से संसार में और कोई पवित्र नहीं है। इसलिए कहा कि मैं ऊर्ध्व हूं और पवित्र हूं, या ऊर्ध्व या पवित्र हो जाओ। और इतना ही नहीं, स्वमृतम अस्मि। स्वमृतम का अर्थ है जो सुष्ठु अमृत है। सुष्ठु का अर्थ है सर्वोत्तम जो अमृत है। वो अमृत कौन है? विशुद्ध आत्म तत्व, वो जो है सुष्ठु अमृत है। वो अस्मि, अस्मि यानी मैं हो जाऊं। सिद्ध वचन में ये कहना होगा कि मैं हूं, और साधक वचन से मैं हो जाऊं, मैं अमृत हो जाऊं। अमृत कहते हैं मरण राहित्य अवस्था। जिसको कभी आप ये नहीं कह सकते कि ये मृत है, मरण जिसका कभी नहीं होता है, जन्म और मृत्यु से जो रहित है, उनको कहते हैं अमृत। मृत्युर्मामृतम गमय। इसलिए उपनिषदों में प्रार्थना की जाती है ना, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। भगवान से प्रार्थना की जानी चाहिए प्रतिदिन के, भगवान आप मेरे को मृत्यु से अमृत की ओर ले जाइए। तो वहां यही तो है, मृत्यु से मेरे को अमर पद की ओर ले जाए। तो देखिए देह के अंदर निष्ठा है ना, वो मृत्यु है, और आत्मा के अंदर निष्ठा हो जाना ही अमृत है। जब तक देह के अंदर निष्ठा रहेगी तो मृत्यु आना ही आना है, क्योंकि ये देह उपलक्षित संपूर्ण संसार जो है वो काल का ग्रास है। काल उनको निगल लेता है, किंतु काल डरता है किससे? वो ब्रह्म से। मृत्यु रुधावति पंचमः, कहा कि मृत्यु भी इसी के भय से दौड़ता है। अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाना ही अमृत है। इसलिए ये भावना की गई कि स्वमृतम अस्मि, सर्वोत्तम जो अमृत है, विशुद्ध ब्रह्म आत्म तत्व ही सर्वोत्तम अमृत है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। निर्दोषम ब्रह्म, ब्रह्म को निर्दोष कहा, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं आता। पद पद पर जो है यदि पाप पुण्य लगता है तो ये देह के अंदर निष्ठा रहते हुए आत्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उनकी जो स्थिति है वो विधि और निषेध से रहित है, आत्मा में निष्ठ है वो। इसलिए कहा कि विशुद्ध जो ब्रह्म आत्म तत्व है वो मैं हूं, ये देह में नहीं हूं। तो देह में से आत्मनिष्ठा हट करके जो विशुद्ध ब्रह्म आत्म तत्व है उसके अंदर मेरी निष्ठा हो जाए, यही अमृत है, ये भावना यहां पर की गई। और उसने दृष्टांत बताया, देखो वाजिनीव, ये दृष्टांत है, वाजिनी इव, जैसे वाजिनी ही, वाजिनी का अर्थ है सूर्य, सूर्य को वाजिनी कहते हैं।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
3: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
4: तो ये मंत्र आपकी रक्षा करता है, इसलिए मंत्र बोलते हैं। मंत्र का मतलब यही होता है, मंत्र माने मननात् त्रायते इति मंत्रः, जिसका मनन करने से आपकी रक्षा होती है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मंत्र। आप जितना जप करते जाओ वो मंत्र आपकी रक्षा करता है, इसलिए अवति इति ओम, जो रक्षा करता है इसलिए ओम है। और इसका जो चतुर्थ अर्थ है ना, बड़ा मजेदार अर्थ है, मैंने इसका संकेत किया था। ओम शब्द का अर्थ स्वीकार है, स्वीकार। आप जब संन्यास लेते हैं तो आपको मंत्र बता दिया जाता है, भैया ओम। ऐसे एक बार बनारस में एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा है, शिव चैतन्य भारती जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के सन्यासी। जब मैं पढ़ने के लिए जाता था तो बड़ा स्नेह करते थे, लोग डरते थे उनसे, हम भी डरते थे, बहुत डरते थे। लेकिन जब पहली बार गया तो मैं पढ़ने के लिए गया उनके पास, उन्होंने पूछा क्या पढ़ना चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं अद्वैत सिद्धि पढ़ना चाहता हूं, कुछ नव्य न्याय पढ़ना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने एक शिष्य के पास भेजा, बोले उनके पास पढ़ो। तो मैंने कहा मैं उनके पास नहीं पढ़ूंगा, आपके पास पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आए हो गुरु बनने के लिए कि चेला बनने के लिए। तो मैंने कहा चेला बनने के लिए। तो बोले चेला बनने के लिए आए हो लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहे हो, बोले मैं तुमको बोल रहा हूं कि मेरे चेले के पास पढ़ो और तुम मुझे बोल रहे कि तुम ही पढ़ाओ, मतलब तुम चेले बनने के लिए नहीं आए हो, मेरे आदेश का पालन करो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज, आपके आदेश का पालन करता हूं। मेरी मुसीबत ये थी कि मैं स्वामी दिव्यानंद जी सरस्वती जी महाराज अपने कैलाश आश्रम में उनके पास पढ़ के गया था मैं, और कई ग्रंथ, कई ग्रंथ उनके पास पढ़ के गया था। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये मुझे पढ़ा पाएंगे कि नहीं, और बात वैसी ही थी, वो बहुत प्रसन्न थे। तो उनके सामने मैंने यही बात रखी थी, मैंने कहा कि महाराज मैं ओंकार का जप करता हूं, ओम ओम ओम, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उस समय मैं सफेद कपड़े में था। तो इसका मैं मंत्र जप करूं कि नहीं, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं और ये तो सन्यासी करता है एक अक्षर। जैसे उन्होंने सुना तो बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि नहीं खूब जप करो, और बोले कि ये मंत्र तुमको सन्यास में ले जाएगा, बोले ये मंत्र तुमको सन्यास में ही ले जाएगा। बोले क्यों नहीं जपना चाहिए, त्याग और वैराग्य ये मंत्र आपके भीतर से प्रकट करे, और किसको नहीं चाहिए त्याग वैराग्य, त्याग वैराग्य तो सबको चाहिए ना। आप संसार के लोग हैं तो आप में वैराग्य चाहिए कि नहीं, आप इतने परेशान आप इतने टेंशन में, आप इतने डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि वैराग्य नहीं है। आप संसार में हैं और संसार में रहते हुए थोड़ा वैराग्य हो जाए तो अरे मजेदार। वैराग्य में जो सुख है, परिस्थितियां भी आ जाए और आपका मन उसमें डूबे नहीं, उबे नहीं, आप उससे परेशान ना हो, इसी का तो नाम वैराग्य है। और क्या है वैराग्य का अर्थ? भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ सजगता है। वैराग्य का अर्थ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का अर्थ वहां होते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होने का भाव है। आप संसार में और कोई विपरीत परिस्थिति आ गई और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हुए उस परिस्थिति को आप देख रहे हैं, समझना कि आप में वैराग्य है। वैराग्य किसको नहीं चाहिए? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं जैसे आसक्ति की जरूरत है आपके जीवन में, वैसे ही वैराग्य की भी जरूरत है। जैसे पकड़ने की जरूरत है ना, वैसे छोड़ने की भी जरूरत है। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या पकड़ते रहते हो क्या? यदि आप पकड़े और न छोड़े तो मुसीबत बन जाए। आप छोड़ते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं, ये दोनों चलता जाता है। इसलिए जैसे पकड़ना जरूरी है, वैसे आप भोजन करते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं ना। अब बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जहां छोड़ना नहीं है? इसलिए आवश्यक है वैराग्य। उन्होंने कहा कि आप मंत्र जप करो, ये आपको ले जाएगा, सन्यास में ले जाएगा। और इस ओम का अर्थ यही, सन्यासी के लिए जो बोला कि आप इसका जप करो, मतलब ओम माने स्वीकार। आपके जीवन में जो भी चीज है ना, उसका क्या करो? स्वीकार करो। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? स्वीकृति का दुख है कि अस्वीकृति का दुख है? भगवान ने गीता जी में कहा, अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितो मनसि। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख यही है कि हम परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अस्वीकृति का दुख है। आप बहुत से परेशान हैं। आखिर परेशानी के केंद्र तो यही है ना। आपको यदि उदाहरण समझना है तो यही तो है। आप सास से परेशान हैं, आप बेटे से परेशान हैं, आप अपने से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो चीजें हैं उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं बस। और जिस दिन आप स्वीकार करना शुरू कर देंगे, और उसी दिन सारा दुख आपका समाप्त। आप एक सूत्र जीवन में धारण कीजिए आज, एक सूत्र। और वो कौन सा सूत्र है? ओम। आपके सामने जो भी है, बहु है, कैसी भी है, लेकिन क्या है? ओम। थोड़ा लेट हो गया है। अब इतना अस्वीकार हो चुका है आदमी के जीवन में, परिस्थितियां इतनी अस्वीकार हो चुकी होती हैं, अब उसको स्वीकार करना। एक बार माई आई, बोली बहुत अच्छी बात सुनाई, बोले प्रवचन में। और घर में जाके मैंने बहू के साथ ओम बोला और उसने बोला कि कुछ गाली दे रही हुई क्या? आपकी परिस्थितियां लंबी हैं, बहुत लंबे समय से आप अस्वीकृति में जी रहे हैं, बहुत से मतभेद हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ा उस लंबे समय की विकृति को संस्कृति में बदलना चाहते हैं। तो आपको लंबे समय, आपको फिर ओम को कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए ये जप के लिए नहीं, ध्यान देना, यहां ओम के अर्थ दो हैं, यहां जप भी है और यहां ओम उपदेश भी है। ये जो ओम एकाक्षर जो मंत्र है ना, ये उपदेशात्मक भी है और ये मंत्रात्मक भी है। आप इसका जप भी करें और इसका जो अर्थ है ना, उसका उपदेश भी ग्रहण करें। आपके सामने जो भी परिस्थितियां आए ना, आप थोड़ा सा कल से ही, आज से इसका प्रयोग करके देखना। जो भी परिस्थिति आ जाए, आप उसको स्वीकार करें। अच्छा, ऐसा है, ठीक। कैसा भी बेटा है तो मैं स्वीकार है, बहू कैसी भी है स्वीकार, सर्वांगीण ना, सर्वांगीण रूप से स्वीकार है। और आप अर्धम अर्धम करेंगे तो नहीं। अच्छा, स्वीकार का मतलब क्या होता है भाई? सामने वाला आपके मन के अनुकूल है, उसको तो आप स्वीकार करते हो, उसको क्या स्वीकार करते हैं? आपके मन के अनुकूल है, उसको क्या स्वीकार कहेंगे? स्वीकार का अर्थ तो वो है जो आपके मन के अनुकूल नहीं है और उसके बाद भी, तो उसमें आपकी महत्ता है। आपके अनुकूल चीज है उसके स्वीकृति में आपका महत्व नहीं है, आप में उसका आपका महत्व नहीं है, आपका भी महत्व नहीं और न उसके स्वीकृति का महत्व है। महत्व उसका तब जब आपके वो अनुकूल नहीं है और उसके बाद भी आप स्वीकार कर रहे। आप श्रेष्ठ महापुरुषों के उदाहरण को देखना, परम पूज्य महाराज श्री भारत साधु समाज के अध्यक्ष थे और हजारों की संख्या में लोग हैं और मंच पर महाराज श्री हैं और उसके अध्यक्ष हैं और उसी समय महाराज श्री को किसी ने बोला आपने ये गलत किया, आक्षेप लगा दिया। और दूसरा कोई होता तो बोलता इसको बाहर करो, मंच से नीचे उतार दो। लेकिन क्या श्रेष्ठ सन्यासी, क्या स्वीकृति, उसी समय महाराज जी मंच पर खड़े होकर कान पकड़ के दंड बैठक किए, मैंने कान पकड़े, बोले गलती हो गई क्षमा करो, प्रसन्न मुद्रा। आप समझ रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी स्वीकृति है, अपमान की भी स्वीकृति। सम्मान तो सभी स्वीकार करते हैं, सम्मान तो अस्वीकार होते हुए भी सम्मान स्वीकृत है क्योंकि आपके लिए है, उसमें बड़ी बात नहीं है। आपके होने की श्रेष्ठता, आपके समझदार होने की बात उसमें है, जहां अपमान भी आ जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करना। एक महात्मा थे, ये विदेश की बात है, विदेशों में भी भारतीय साधुओं की तरह दुर्लभ महात्मा हुए हैं, उसका नाम सेंट फ्रांसिस था और वो भिक्षा मांग के खाते थे, किसी बड़े शहर के मेयर के पुत्र थे, वैराग्य हो गए और वो क्या करते थे, आठ दिन में एक बार भिक्षा मांग के खाते थे, आठ दिन में एक बार जाते। और विदेशों में जब आप भिक्षा मांगोगे तो आपको भिक्षा में क्या मिलेगी? अरे वही डबल रोटी, केक, ठोस कुछ कुछ मिलेगा ही, वहां रोटी दाल चावल कहां से मिलने वाली। उनका एक दोस्त था, वो बराबरी का था, तो फ्रांसिस उनके घर में भिक्षा करने के जाते थे, वो कुछ बोलते होंगे जाकर के, और वो अंदर से आता और दस बीस इनको गाली देता और वो कहता भैया तुम मेरे दरवाजे पर भिक्षा के लिए मत आओ, भिखारी भिखारी तुम बन के क्यों आते हो, लोग मुझे बदनाम करते हैं, लोग पूछते हैं तुम्हारा दोस्त है क्या, ये तो भिखारी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। और गाली देता, कुछ देता नहीं, वो केवल गाली देता हो। वापस लौट आते हो, महीनों गुजरे लेकिन वो आना छूट नहीं रहे थे। एक दिन उसने कस को पकड़ा, कस करके पकड़ा और पूछा ये बताओ कि मैं इतना तुमको मना करता हूं उसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आते हो और मेरे से तुमको मिलता क्या है, मैं भिक्षा भी नहीं देता हूं। सेंट फ्रांसिस ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा दोस्त जो चीजें मुझे तुमसे मिलती हैं दुनिया में किसी से भी नहीं। बोले मैं क्या देता, अरे बोले तुम गाली देते हो ना, जब तुम गाली देते हो तो उस समय मैं देखता हूं कि इन गालियों का मेरे मन पर क्या असर पड़ता है और मैं तुमको धन्यवाद देता हूं। उस समय जब पहले तो मेरा मन बड़ा पीड़ित हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक थप्पड़ जमाऊं क्या, मैं भी गाली दूं क्या, लेकिन आज मेरी ऐसी स्थिति है कि तुम कितना भी गाली दो लेकिन मेरा मन उससे कोई प्रभावित नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये स्वीकृति है, ये स्वीकृति है। आपका सम्मान होगा, आपका अपमान होगा, आपके आसपास के लोग क्या आपके जैसे होंगे क्या, आप तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हो कि नहीं, और ये भी सबसे बड़ी जड़ है समस्या की। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं और आप अपने आप को श्रेष्ठ समझोगे तो आप दूसरे को स्वीकार कैसे करोगे? आप अपने को बिल्कुल निरापद, निर्दोष, बिल्कुल अच्छी प्रकार के समझेंगे, आप दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक दिन बोला था ना कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, आपको वोटिंग करना हो तो आप किसको करेंगे हा? और आप भी उसमें हैं प्रतिनिधि, आप अपने आप को ही करेंगे। इसलिए ध्यान देना, यहां ओम का अर्थ यही है कि आपके सामने जो भी चीजें हैं ना उसको आप स्वीकार करो बस, और आप स्वीकार करना शुरू कर देना, लेकिन उसमें अस्वीकृति की मानसिकता को घुसने मत दीजिए। निरंतर निरंतर स्वीकार, जो भी है स्वीकार करते, और उस स्वीकार करते करते करते मन आपका संन्यास की उच्च भावना में प्रवेश कर जाता, और इसी का नाम ओम है, ओम है, और इसीलिए सन्यासी का मंत्र बन गया। ये जो मंत्र बना सन्यासी का, इसीलिए सन्यासी माने स्वीकार है, सब स्वीकार है, उसके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जो भी चीजें हैं सब अपनी, और जो भी चीजें कोई किसी का नहीं है और सब मेरे हैं। ये उच्च कोटि की भावना को निर्मित करने के लिए ही ये आपके जीवन में सर्वोच्च ओम, सर्वोच्च मंत्र जो है ओम है, और इसका अर्थ यही है, ओम माने स्वीकार, और स्वीकृति से ही व्यक्ति साधु बनता है। स्वीकृति के बिना, सर्व स्वीकृति के बिना व्यक्ति कभी साधु नहीं बनता है। यहां स्वीकृति शब्द का अर्थ केवल आंशिक स्वीकृति नहीं है, स्वीकार तो हम भी करते हैं, स्वीकृति माने पूर्णतया स्वीकार करना, पूर्णतया स्वीकार करना। एक व्यक्ति परम पूज्य महाराज श्री के पास आया और उन्हें कहा कि महाराज मुझे आधा ब्रह्म ज्ञान हो गया है। तो महाराज जी ने कहा भैया आधा ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? तो महाराज जी ने उन्होंने बोला कि ब्रह्मज्ञान होने के बाद सब अपना मालूम पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं? और मुझे भी मालूम पड़ने लगा, दूसरे का भी अपना मालूम पड़ने लगा है। मेरा तो मेरा है, दूसरे का भी समझ गए। आप इसको पूरे रूप से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक मैं दृष्टांत सुना देता हूं, मैं ऐसे दृष्टांत मुझे बहुत कम आते हैं, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मैं अक्सर सुनाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम उपदेशों को कैसे अर्थ स्वीकृति में लेते हैं। एक कोई व्यक्ति था और उसने एक बहुत सुंदर बगीचा बना रखा था, बहुत सुंदर बगीचा था, बगीचे के प्रति उसका बड़ा लगाव था, मोह था, आसक्ति थी। उस बगीचा में एक गाय आ गई और वो बगीचा खाने लगी, उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने एक डंडा मारा और वो गाय मर गई। गोहत्या का पाप लगा और गोहत्या उसके पास पहुंच गई और गोहत्या ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई हूं क्योंकि तुमने गाय को मारा है। ब्राह्मण बड़ा पढ़ा लिखा था वो, उसने कहा मैंने कब मारा है? अरे मैंने तो कभी नहीं मारा। हां हां हां बोले, हां बात तो ठीक है, मैंने नहीं मारा, वो इंद्र ने मारा है, इंद्र ने मारा। उन्होंने कहा कि इस हाथ का देवता कौन है और मारा किसने? हाथ ने। और हाथ का देवता कौन है? इंद्र। तो मैंने मारा कि इंद्र ने मारा? बोले जाओ तुम उसके पास। वो इंद्र के पास पहुंची। दृष्टांत बड़ा मधुर है, ये हम ही लोगों का वर्णन है इसमें। इंद्र के पास वो गोहत्या पहुंची और उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आई क्योंकि तुमने गाय को मारा है। इंद्र ने कहा मैंने और गाय को? उन्होंने समझा दिया, बोले हाथ की देवता आप हैं? बोले हाँ। और उस ब्राह्मण के हाथ ने गाय को मारा? बोले हाँ। तब बोले तुम अधिकारी हो गए कि नहीं? इसके अपराधी तुम हुए कि नहीं? इंद्र तो घबरा गए, ऐसे तो कितने को हत्या मेरे पास पहुंच जाए, कितने पाप मेरे तक पहुंच जाए, भागी भागी उस देवता के पास पहुंचे, उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण तो सचमुच बड़ी सुंदर बगीचा बना रखा था, रूप बदल करके इंद्र वहां पहुंचे और पहुंच करके नारायण वहां स्तुति करने लगे, ब्राह्मण की स्तुति करने लगे। वाह वाह क्या सुंदर बगीचा है, इतना सुंदर बगीचा बनाया किसने? बड़ा अभिमान में, बड़ा प्रसन्नता में आया वो ब्राह्मण और उसने छाती ठोक के कहा मैंने बनाया है। वो गौहत्या थी ना बगल में, इंद्र ने कहा बैठो इसके सिर पर। जब गाय को मारा तो आपने क्या बोला? इंद्र ने। और जब बगीचा बनाया ये किसने बनाया, तब बात किस पर आई? आप पूरा स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना। आपको उस समय भी बोलना चाहिए था, भैया ये बगीचा इंद्र ने बनाया, कहना चाहिए था कि नहीं? जब गौ हत्या की बात आई तो कहा कि इंद्र ने, और जब बगीचा की बात आई तो ऐसे तो हम जीते हैं। ये वो ब्राह्मण, ये तो हम लोगों के जीवन का प्रतीक है। हम लोग भी संसार में ऐसे ही जीते हैं, आग्रह में, दुराग्रह में, अर्ध सत्य में, स्वीकृति में, अस्वीकृति में, और इस स्वीकृति और अस्वीकृति के बीच में हम झूलते हैं। आज यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा अंतर्द्वंद और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है। और संन्यास का अर्थ होता है सर्वस्वीकृति, और ओम का भी अर्थ होता है सर्वस्वीकृति। ओम माने स्वीकार। इसलिए आज आप इस ओम के अर्थ को समझना, उपदेशात्मक और मंत्रात्मक। आप ध्यान करेंगे तो ओम का, और इसका उपदेशात्मक जो भाव है ना, स्वीकारार्थ, आप स्वीकार करो। ये एक मंत्र भी आपके जीवन में यदि सही रूप में प्रवेश करे, एक ही मंत्र आपके जीवन में उतर जाए, तो आपको अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं। आप ध्यान देना, मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के लिए राजमार्ग की आवश्यकता नहीं है। चलने वाले व्यक्ति के लिए एक पगडंडी की भी, समझ में आया कि नहीं, एक पगडंडी भी पर्याप्त है। चलने वाले के लिए पगडंडी भी पर्याप्त है, और नहीं चलने वाले के लिए राजमार्ग भी छोटा है। आप बहुत बड़े मार्ग पर है, बहुत बड़े मार्ग पर खड़े हैं, लेकिन आप चलना नहीं चाहते, तो आप कहीं पहुंचेंगे? आपको मार्ग कहीं पहुंचाता है कि आपको चलना पहुंचाता है? आप बोलते तो जरूर है कि रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगा, ये रास्ता आपको वहां तक पहुंचा देगा, ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन रास्ता कभी किसी को पहुंचाता है क्या? रास्ता कभी किसी को नहीं पहुंचाता है, क्योंकि रास्ता तो चलता ही नहीं, रास्ता तो जहां पर है वहीं रहता है। इसलिए रास्ता आपको नहीं पहुंचाता है, अपितु उस रास्ते पर जो आप चलते हैं ना, वो चलना आपको अपने गंतव्य तक पहुंचाता है। इसलिए कितना भी बड़ा मार्ग आपके पास है, लेकिन आप मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो आपको वो मार्ग कहीं पहुंचाएगा नहीं। आपके पास बहुत बड़ा मंत्र है, लंबा चौड़ा, हा? बहुत बड़ा मंत्र है, हा? और आपको बहुत बड़े गुरु ने दिया है, अब वो मंत्र आपको कहीं पहुंचाएगा? आप उस मंत्र को जपते नहीं, आप उसके मंत्रार्थ को जीवन में उतारते नहीं, तो वो मंत्र आपको कहीं पहुंचाएगा क्या? लोग बोलते हैं, हमने अमुक आदमी से मंत्र लिया है, बहुत बड़ी बात है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान कहते नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अध्यात्म का प्रारंभ कभी विनष्ट नहीं होता है। आप अध्यात्म में जितना चल चुके होते हैं, उतना आप चल चुके होते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन आपका प्रोग्रेस रुकेगा। आप चल नहीं रहे, आप रुके हुए हैं। आपको मंत्र मिला है, आपका बीज अक्षय है, आपका मंत्र अक्षय, वो मिटेगा नहीं। जैसे मान लो कि कोई बीज आपने जमीन में डाला है, लेकिन पानी नहीं डाला, खाद नहीं डाला, सूखी जमीन पड़ी है, अब वो बीज आपके अंदर पड़ा होगा, जमीन के अंदर पड़ा होगा, लेकिन उगेगा नहीं। और उस उगना, आप उसको उगाना चाहते तो आपको पानी डालना पड़ेगा, आपको खाद डालना पड़ेगा, तब वो उगेगा। या आपका पुरुषार्थ है, आपको आपको मंत्र मिला गुरु से, साधना मिली गुरु से, आपको उसको जपना है, उस मंत्रार्थ पर आपको चलना है, आपकी साधना जीवन शैली बनाना है, और उसके बाद वो मंत्र की साधना आपको पहुंचा देगी। और आप केवल मंत्र लेकर के बैठे हैं तो मंत्र आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा, जहां की वहीं। आपको अगले जीवन में साधना करना पड़ेगा, आपको अगले जन्म की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। एक बार परम पूज्य आनंद में मां को किसी ने प्रश्न पूछा, आपका संग है हमको, और हमको अब साधना करने की क्या जरूरत है, आपके साथ हम हैं, बहुत बड़ी बात है। मां ने कहा, इतना संग तो मच्छर के भी साथ है, मक्खियों के भी साथ है, इस शरीर के आसपास तो मक्खियां भी तो रहती हैं, मच्छर भी तो रहते हैं, तो क्या उसको संग बोलते हैं? केवल संग का अर्थ उतना ही नहीं है, संग का अर्थ होता है सत्संग। आप संग से अपने जीवन को सत की ओर ले जा रहे हैं, सत्संग का अर्थ यही है। आप संग से आप सत की ओर आप जा रहे हैं, आपके जीवन में सत की प्रवृत्तियां निर्मित हो रही हैं। आपका जीवन सत प्रधान बनता जा रहा है, उसका अर्थ सत्संग है। आप कितने भी बड़े महापुरुष के पास आप बैठे रहो, आप प्रेरणा न लो, आप उस महापुरुष को अपने जीवन की शैली न बनाओ। रामकृष्ण परमहंस के पास तो रसिया भी तो था, लेकिन वो सारी दुनिया रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा में रहती थी, उनके ध्यान में, आराधना में, सत्संग में, और बाहर बैठकर रसिया गाली देता था। तो तात्पर्य आपका मार्ग आपका आपको कहीं नहीं पहुंचाता है, आप ही तो मार्ग पर जब आप चलते हैं तो चलना आपको वहां पहुंचाता है। इसलिए अवति रक्षति इति ओम, आपको ओम आपकी रक्षा करेगा, आपको चलाएगा, लेकिन उसका जो अर्थ है स्वीकार, उसका अर्थ जो परमात्मा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद वो तत्व तक आपको पहुंचा देगा। इसलिए सर्वप्रथम यह कठोपनिषद के प्रारंभ में इस ओम पर भगवान के आद्यतम अनादितम अक्षर का उच्चारण करते हुए मंगलाचरण किया है। अभी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं, आप सीधे बैठ जाएंगे, एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र की जपेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। आज अपने मन को ओंकारेश्वर, महाकाल, केदारेश्वर, काशी, वाराणसी, आप जहां भी अपने मन को ले जाना है, जो प्रियतम आपका ज्योतिर्लिंग, वहां आप अपने मन को ले चलना और उसी मंदिर में भगवान के बगल में बैठकर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना। हरि ओम तत्सत्। हरि

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: बिल्वाष्टकम्।